एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 मई सन 2026, प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी।

0: होगी। अमरीकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। वंदना कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये मातृवंदना।

श्रोता भी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान एफएम 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में समूह स्वर में ये देशगान गीत सुनने के बाद आइए बढ़ते हैं भक्ति संगीत के क्रम में और सुनते हैं ये भजन जिसमें भक्त कामना करता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे द्वार पर चाकरी करने भी तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि कम से कम उस काम के दौरान मेरे दो नयन आपको टकटकी लगाकर देखते तो रहेंगे, इसलिए मुझे अपने दरबार का चाकर बना लो। सुनते हैं भक्ति भाव में शब्दों को पिरोते हुए ये गीत सुबह लक्ष्मी के स्वर में।

भगवान के दर आकर भक्ति यही तो कामना करता है कि हे प्रभु, मुझे चाहे अपने दर पर सेवक बना लो, चाकर रख लो, लेकिन मुझे अपनी शरण में ले लो। वजह यही है कि कम से कम मैं उतनी देर आपकी शरण में आकर के आपके दर्शन तो कर सकूंगा, आपको एक टक निहार तो सकूंगा, इसलिए मैं आपकी शरण आकर के भक्ति में डूब करके आपकी आराधना करता चाहता हूँ। अभी आप MS सुबह लक्ष्मी के गाए इस भक्ति गीत में कुछ ऐसी ही भावना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं मीरा की वो भक्ति जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित होकर वो सिर्फ यही कहती है कि मैंने राम रतन धन पा लिया है और उस राम रतन धन पाने के बाद अब मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं। सुनते हैं इस भक्ति गीत को।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। सुबह के 6:30 हुए हैं और समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आज आप सुनिए ब्रह्म सत्य पर चिंतन। आलेख RC शुक्ला का है, जबकि वाचन स्वर सुनील केशव देवधर का है।
1: खोज करने वाली ऋषि परंपरा के हमारे पूर्वज जगत और जीवन दोनों के प्रति समान रूप से जागरूक थे। ब्रह्म के साक्षात्कार को महत्व देते हुए भी उन्होंने जीवन कला की उपेक्षा नहीं की। संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटकर उन्होंने इस कला का ऐसा रूप निर्दिष्ट किया जो सांसारिक जीवन के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इन 4 आश्रमों में भी गृहस्थ आश्रम की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। महाभारत के अनुसार गृहस्थाश्रम वो यज्ञ स्थली है जहाँ जीवन रूपी यज्ञ उदात्ततम रूप में संपन्न होता है और हमारे हृदय की सब कामनाएं और वासनाएं वात्सल्य करुणा तथा लोक सेवा के पवित्र यज्ञ कुंडों में अनुभव और ज्ञान की अग्नियों का स्पर्श पाकर कलुष मुक्त और उदात्त होती हैं। इसीलिए तो महाराज भर्तृहरि ने कहा, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। वे कहते हैं, आनंद कल्लोल से भरा घट, सुबुद्धि वाले बाल बच्चे, प्रसन्न चित्त और प्रियवाणी बोलने वाली प्रिया पत्नी, अच्छे मित्र, ईमानदारी और न्याय से उपार्जित धन, दाम्पत्य निष्ठा, आज्ञापालक सेवक, अतिथियों के प्रति सत्कार भावना, नित्य इष्ट देव का पूजन, सदा सुस्वादु खान पान तथा सज्जनों का सत्संग, ये सब जहाँ एक साथ हों वो गृहस्थाश्रम धन्य है। भर्तृहरि राजा थे, बाद में सन्यासी हो गए। गृहस्थाश्रम के आचार धर्म का उन्होंने यथामति और यथाशक्ति पालन किया था और इस आत्मसंतोष से उनका सन्यास तेजवंत हो उठा था। उन्होंने अनुभव किया था कि गृहस्थाश्रम से होकर गुजरे बिना मनुष्य की अंतश्चेतना का विकास संभव नहीं, किंतु उन्होंने ये भी अनुभव किया था कि गृहस्थाश्रम स्वर्ग भी हो सकता है और नर्क भी, पवित्र यज्ञ भी और सर्वदा ही अग्निकांड भी। इसीलिए उन्होंने स्वर्गोपम गृहस्थाश्रम की विशेषताएं भी स्पष्ट कर दी थीं। प्रत्येक आश्रम के अपने नीति नियम होते हैं, गृहस्थाश्रम के भी हैं। प्रत्येक आश्रम साधना का स्थल होता है, अतः हर गृहस्थ को अपने घर परिवार को गृहस्थाश्रम बनाने के लिए भी साधना करनी पड़ती है, जीने की कला सीखनी होती है। गृहस्थाश्रम का आधार दाम्पत्य प्रेम है, दो युवा हृदयों की एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ समर्पण भावना। इस भावना की भूमिका में काम रहता है, किंतु काम प्रवणता प्रणय की पहली स्थिति ही है। सहचर्य एवं शारीरिक काम भोग की तृप्ति के उपरांत यदि दंपति क्रमशः जीवन के विविध स्तरों पर एक दूसरे के पूरक बनकर अपने प्रणय का विकास वात्सल्य करुणा और लोक सेवा में न कर सके तो निश्चित ही उनका प्रणय विषाक्त हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रुका हुआ जल विषाक्त हो जाता था। प्रिया सदैव तन्वी श्यामा शिशिर दशना।

0: जीवन तो पशुओं का भी होता है, किंतु दाम्पत्य व्यवस्था को क्रमशः कुटुंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और अंत में सर्व संस्कार युक्त जीवन व्यवस्था में विकसित करने की कला केवल मनुष्य ने ही सीखी है और यही उसकी चरम उपलब्धि है। यदि कोई गृहस्थ आश्रम की पहली ही अवस्था में अटक गया तो उसने जीवन की कला का छोटा सा अंश ही सीखा। ऐसी अवस्था में उसका पारिवारिक जीवन अव्यवस्थित होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रेम कभी भी घृणा में बदल सकता है यदि वो निरंतर उदात्तता की ओर विकसित न हो। जब दाम्पत्य प्रेम परिवार तक ही सीमित होकर रह जाता है और सामाजिक निष्ठा में विकसित नहीं होता तो व्यक्ति अर्थ संचय असामाजिक तरीकों से करने लगता है। वो स्वार्थी लोगों से घिर जाता है, भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन उसकी पत्नी और बच्चों को पथभ्रष्ट कर उसे और उसके घर को गृहस्थाश्रम बनाकर नर्क बना देता है। यही कारण है कि भर्तृहरि ने अपने श्लोक में सभी तत्वों की शुचिता और आदर्शोन्मुक्ता पर एक साथ जोर दिया है।
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे ब्रह्म सत्य पर चिंतन, आलेख आरसी शुक्ला का था, वाचन स्वर सुनील केशव देवधर का। श्रोताओ, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं और समय हुआ है श्री रामचरितमानस के गायन पाठ का। आइए सुनते हैं ए हरिहरन के स्वर में श्री रामचरितमानस का गायन पाठ।

गरुड़ के आगमन से काकभुशुंडी समेत सभी पक्षी अति प्रसन्न हुए। काकभुशुंडी ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। गरुड़ का आधा मुंह तो वैसे ही भंग हो चुका था, फिर भी उन्होंने इस स्वीकारोक्ति के साथ काकभुशुंडी से रामचरित सुनाने की विनती की।

0: श्रोता आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ, स्वर ए हरिहरन का था। समय हुआ है कृषि सामयिकी का। आज आप सुनिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में कीट रोग नियंत्रण पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता।
1: मूंग अपने प्रदेश में काफी क्षेत्र में लगाई गई है और ग्रीष्मकालीन मूंग में खास तौर से कुछ कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल को काफी हानि होती है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती में हमारा एक सुझाव है कि अधिक से अधिक जो किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग न करें, क्योंकि यूरिया खाद जो है इसकी बढ़वार को बढ़ा देती है और फसल को थोड़ा सा कोमल बना देती है, जिसके कारण कीड़े बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है और इसमें आपके फूल और फली भी कम लगती है। इसलिए किसान भाई जो है यूरिया खाद का प्रयोग मूंग की फसल पर अभी न करें, और जिन खेतों में थोड़े थोड़े पत्तियों पर कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, कीटों में प्रमुख रूप से जो कीट आते हैं वो हरा मच्छर, जयसेड, एफेड, थ्रिप, इस प्रकार के कीट, और एक कीट और इस फसल में आता है जिसे हम सफेद मक्खी के नाम से जानते हैं। यह सफेद मक्खी बहुत छोटी छोटी होती है और काफी जो निरीक्षण करने के बाद में हमें पेड़ों को हिला करके दिखाई देती है, और यह ये जो कीट हैं, ये कीट पत्तों के रस चूस करके जो हमारी अगली फसल है, जो दूसरे हमारे स्वस्थ खेत हैं, वहाँ पर जा करके ये रस छोड़ देते हैं। तो ये जो विषाणु रोग के कीटाणु हैं, स्वस्थ फसल पर जा करके जब छोड़ते हैं तो हमारी जो रोगग्रस्त फसल है विषाणु से, जैसे उसमें पीले पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं और काफी दूर से फसल के जो ऊपर के तीन चार पत्ते होते हैं जो पीले रंग के दिखाई देते हैं, और वहां से रस चूस करके स्वस्थ फसल पर ये छोड़ते हैं, तो हमारे जो स्वस्थ खेत हैं वह भी विषाणु रोग से रोगग्रस्त हो जाते हैं, और फसल में चुर्रा मुर्रा नाम का रोग भी है, वह भी काफी तेजी से इन कीटों के द्वारा फैलता है। तो इन कीटों का नियंत्रण करना मूंग की फसल में अति आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई मैं एक दवा बताना चाह रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। डाई मैथोएट नाम की दवा है, डाई मैथोएट। यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के मान से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें, तो आपके जो लगने वाले मूंग की फसल में लगने वाले कीट हैं उनका नियंत्रण होगा और फसल की अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि मूंग की फसल में कुछ बीमारियाँ आती हैं, उनके कारण भी मूंग की फसल को काफी हानि होती है। मूंग की फसल पर पत्तियों पर किडनी के आकार के या अनियंत्रित आकार के कुछ भूरे बादामी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ धब्बे गोल गोल छोटी छोटी आकार की संरचनाओं के से शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे मौसम की अनुकूलता के हिसाब से ये बढ़ते जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, पत्ती का काफी भाग ये खत्म कर देते हैं या पत्ती का काफी भाग धीरे धीरे करके सूख जाता है और पत्ती ऐसी प्रतीत होती है जैसे जल गई हो। तो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो मूंग की फसल में जो खाना बनाने का कार्य करती है और ज्यादा से ज्यादा फूल और फली उसमें लगती है, उसका कार्य प्रभावित होता है और फसल को काफी हानि होती है। अगर इस प्रकार के धब्बे दिखाई दें तो किसान भाइयों आप उसमें एक दवा है उसको आप नोट कर लें, मैनकोजैब नाम की दवा है। मैनकोजैब दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। यह दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी लगता है और 500 लीटर पानी में 1250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगी। दो बार 10 दिन के अंतर से आप इस दवा का छिड़काव कर दें तो कीट एवं रोगों का नियंत्रण अभी जो वर्तमान में फसल है मूंग की उसमें आप ये करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा और अधिक से अधिक आपको उत्पादन प्राप्त होगा।
0: श्रोता आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में कीट रोग नियंत्रण पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जेसी गुप्ता। समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा आज जो प्रसारित तो होने वाली सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 7 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे, इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:05 पर आप जल संरक्षण पर लघु वार्ता सुनेंगे। 7:10 का समय प्रादेशिक समाचार का रहेगा, इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:45 का समय रहेगा हमारे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का। 8 बजे समाचार प्रभात दिल्ली से रिले होगा। 8:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा। कार्यक्रम लोकरंग आज आप सुनेंगे 9:00 जिसमें कलाकार होंगे उत्तम सिंह कुशवाहा और राजीव कुमार रावत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश 9:30 पर आप सुनेंगे। जिले की चिट्ठी का प्रसारण 10:00 हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप

बारह बजकर 25 मिनट पर कुछ संदेश आप सुनेंगे। 12:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। महिला कार्यक्रम ये ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा जो दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे। इसे हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। लोक संगीत ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति और सुगम संगीत भी ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा। इसे हम क्रमशः 1:30 पर और 1:45 पर भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, सायंकाल 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। युववाणी में आज आप सुनिए ग्वालियर केंद्र की ये प्रस्तुति रहेगी और युवा इससे कई उपयोगी जानकारियां भी ले सकेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल से 5:33 पर अनुप्रसारित करेंगे। 7:21 पर आप सुनेंगे चौपाल। इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, खरीफ एवं खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच विषय पर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से ये वार्ता और इनसे भेंट करता होंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 8 बजे और 9 बजे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाली सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है संस्कृत समाचार दिल्ली से।

0: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370-79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र

0: हस्तकरघः परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3rd दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय हुआ है लघु वार्ता का। लघु वार्ता में आज आप सुनिए जल संरक्षण पर लघु वार्ता। श्रोताओं, नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दीजिए दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस जगती का भगवान रे। पानी, प्रकृति, पर्यावरण, ये सब हम सबको सुरक्षित रखने हैं, बचाकर रखने हैं। और यकीन मानिएगा, यदि हमने जल को बचाकर रखा, पानी को बचाकर रखा, तो हम अपनी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। वरना अगला जो विश्व युद्ध है, कहा तो यही जाता है कि पानी के लिए ही अगला विश्व युद्ध होगा। तो जल संरक्षण की महत्ता समझिए। एक समय था जब पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में हैंड पंप हुआ करते थे और 20 फुट पर पानी केवल हैंड पंप के एक हत्थे को चलाने से आ जाया करता था। और आज समय है कि 300 फुट की गहराई पर भी वहां पानी नहीं मिलता, और कई जगह शहर में ऐसी हैं जहां 1000 और 1500 फुट की गहराई पर भी पानी नहीं है। ऐसे में हम जमीन से कितने पानी का दोहन कर उपयोग कर चुके हैं और कितना पानी हमने दुरुपयोग करके बहा दिया है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम पानी का उपयोग करें, क्योंकि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। हमारे चिंतक, हमारे मनीषी, हमारे साहित्यकार बहुत पहले हमें बता गए कि हमें पानी को सहेज कर रखना होगा, बचा कर रखना होगा। यदि हमने पानी के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई, हम सचेत नहीं हुए, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें पानी के लिए खूनी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कई कॉलोनियां, कई शहर में हिस्से और कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थितियां हैं। हालांकि लगातार सुधार हो रहे हैं, घर घर पानी पहुंचाने की पहल की जा रही है, लेकिन क्या हम अब भी जागरूक हैं? याद करिए, जब भी हम सेव करने के लिए खड़े होते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कांच के आगे खड़े होते हैं, तो हम पानी के नल को खुला छोड़कर ऐसे चालू कर देते हैं मानो सारी दाढ़ी उसी से बननी है। जबकि हम अपनी सेब को गीला करके हम सीमित पानी में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, किसी पात्र में अर्थात कटोरी में या ग्लास में या जग में पानी लेकर के, लेकिन हम सीधा नल खोल करके पानी का उपयोग करते हैं। हम गाड़ियों को धोते हैं तो हम बाल्टी में पानी लेकर भी गाड़ियों को धो सकते हैं, लेकिन सीधा ले जाम खुली छोड़ देते हैं। क्या ये हमारी जागरूकता है? क्या ये हमारी पानी को बचाने की पहल है? हम स्वच्छता का पाठ सीखें, लेकिन पानी बचाने की नसीहत भी हम में हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो तय मानिएगा, हम खुद भी जागरूक हैं और नई पीढ़ी को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने व्यर्थ पानी गंवाया तो फिर तय मानिए कि हम लगातार पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद पानी की कीमत को हम तब समझते हैं जब तेज गर्मी आती है, घर के आसपास ना तो मणिखेड़ा का नल आता और ना घर के आसपास रहने वाले ट्यूबवेल हमें पानी देते, तब समझते हैं दो दिन की परेशानी में कि घर में पानी की बूंद नहीं है और पानी की कीमत क्या है। इस नसीहत को हम अपने लिए सबक माने और उस सबक को मानते हुए हम पानी को सहेजें तो निश्चित रूप से जल संरक्षण की दिशा में ये बड़ी पहल होगी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे जल संरक्षण पर लघु वार्ता। सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक। नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रूपये की माइक्रो डेवलपमेंट योजना। और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, नौगांव में पारा 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक क्षेत्र सतत विकास में नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को भारत के व्यापक स्तर के साथ जोड़कर भविष्य के लिए भरोसेमंद वैश्विक समाधान विकसित कर सकते हैं। श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है और भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक चर्चा करेंगे। भोपाल में हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीकी आधारित विकास को नई दिशा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल आयोजित मध्य क्षेत्रीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों और सुशासन के प्रयासों की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में विशेष प्रयासों से सफलता प्राप्त की गई। प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित रहे ग्रामों के लिए 330 करोड़ रुपए लागत की माइक्रो डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। अलग अलग योजनाओं के तहत सड़क, पुल, मोबाइल टावर, नई सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश आज धान और गेहूं के उत्पादन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी आत्मनिर्भरता हासिल करना बाकी है। कल भुवनेश्वर में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय खरीफ कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत की कृषि को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विषय विशेष, क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष रोडमैप के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि
2: एक हमने चर्चा की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। हमारे पास तो 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ छोटा किसान लैंड होल्डिंग का, मैं तो कम लैंड होल्डिंग में कैसे वो ज्यादा उत्पादन करे, उसकी आजीविका कैसे चले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए, लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए, जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं।

0: ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद के आह्वान के चलते आमजनों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बंद के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी खुले रहेंगे। गौरतलब है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं होने से नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। नीमच और आगरमालवा में औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की सूचना दी गई है, लेकिन जिले में आमजन और मरीजों को जरूरी दवाइयां मिल सकें इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के कुछ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा भोपाल में भारत भवन में 27 मई से 2 जून तक सदानीरा समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत भवन में सदानीरा समागम का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के AI आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार यह 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। संग्रहालय के अधिकारियों के अनुसार आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। यह संग्रहालय का तीसरा AI आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला में कल महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। माँ वाग देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि माँ वाग देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश भीषण गर्मी और तेज लू की चपेट में है और इसका असर अब जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। कल प्रदेश में तेज गर्मी और लू जैसे हालात के बीच 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों को लू लगने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चली। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं और फिलहाल राहत के संकेत नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मई को शासकीय ITI झांसी रोड में किया जाएगा। सतना के शासकीय ITI कॉलेज बिरला रोड में आज 11 बजे से 2 बजे तक युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कल डिंडोरी के विकासखंड अमरपुर में ग्राम नांदा में आयोजित क्षीरधारा ग्राम योजना शिविर में पशुपालकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई। इंदौर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 15,051 एक्सरे किए जा चुके हैं और TB के प्रिवेंटिव इलाज में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सिवनी में विगत 18 मई से जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। मैहर, अमरपाटन और रामनगर के 35 ग्रामों में PM जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह आज खंडवा के ग्राम रोशनी में कृषि, मत्स्य एवं पर्यटन के समेकित मॉडल का शुभारंभ करेंगे। नीमच कलेक्टर ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मात्र स्वास्थ्य उपार्जन और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरदा में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को नालसा और सालसा की विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर RTO और जिला प्रशासन की टीम ने कल बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच के दौरान 8 बसों से 2,26,000 रुपये का जुर्माना वसूला। और झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश टुकाराम भरसट ने कल पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक में पंपों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीति बैठक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रुपए की माइक्रो डेवलपमेंट योजना। और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं बंजारन फिल्म का ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद अजीज अलका याग्निक ने, आनंद बख्शी की लिखी ये रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म सफर का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर की लिखी रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत।

श्रोता, आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में ये फिल्मी गीत। आइए आप सुनते हैं महेंद्र कपूर, श्याम चित्रा साथियों के स्वर में ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं और समय हुआ है हमारे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का।

नमस्कार, शिवपुरी सुनने वाले सभी रेडियो श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र संजीव बांझल का नमस्कार। मित्रों, हम सब लोग गर्मी की तपिस में जूझ रहे हैं और कभी सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहे जाने वाले शिवपुरी में मौसम ऐसा भी होगा हमारे बुजुर्गों ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन लगातार हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके, पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करके, भौतिक सुख सुविधाओं को संजोकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं फैक्ट्रियां निर्माण कर ऐसा माहौल शहर में निर्मित कर दिया कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गर्मी का तेज पारा की शहर या सिटी नजर आने लगी है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नसीहत लें पर्यावरण सहेजने के लिए, हम नसीहत लें प्रकृति को सहेजने की, हम नसीहत लें वातावरण वायुमंडल में किस तरह हम सहायक बनकर बेहतर इंसान बन सकते हैं उस पहल की। तो ये सब पहल जब हम करेंगे तो हम बेहतर भविष्य भविष्य की पीढ़ी को देंगे। बात हुई थोड़ी सी जागरूकता की और पर्यावरण संरक्षण के साथ समाज में जागरूकता लाने की। अब बात कर लेते हैं शहर से जुड़ी हुई कुछ अन्य उपयोगी सूचनाओं की। पहली सूचना ये कि जिस तरह इंटरसिटी बस हादसे में शिवपुरी के सीए दंपत्ति की जान गई, उसके बाद प्रशासन ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। लगातार अभियान चलाकर प्रशासन ने उन परिस्थितियों को जांचा परखा है जिसके चलते ये हादसा हुआ। बस संचालकों की एक बैठक जिला प्रशासन ने इसी तारतम्य में कलेक्ट्रेट में ली। इस बैठक के दौरान बहुत स्पष्ट शब्दों में कलेक्टर श्रीमान अर्पित वर्मा जी और एसपी वांगकर ने यह तय कर दिया कि यांगचेन डोलकर भूटिया बोली कि बस संचालकों को अब आवश्यक सुरक्षा का मानक निर्धारित करना ही होगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मुझे आपसे सिर्फ तीन बातें कहनी हैं। पहली ये कि जब भी आप किसी ड्राइवर को बस पर रखें तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें, कहीं वह नशेलची तो नहीं, उसने पूर्व में बस की दुर्घटनाएं तो नहीं की हैं। इस तरह से आप ड्राइवर की कुंडली देखकर बस का चालक

अलग रखेंगे तो बस सुरक्षित भी रहेगी, यात्री भी सुरक्षित रहेगी। आमतौर पर होता यह है कि जो बस संचालक होते हैं वो बस संचालक बसों का संचालन ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर इनके माध्यम से कराते हैं, खुद तो बस पर रहते नहीं। लेकिन इन बसों की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। कभी भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका सीधा आरोप भी इन्हीं पर लगता है। ऐसे में अब व्यवहार कौशल का परीक्षण ड्राइवर और कंडक्टर को दिया जाए, इसकी नसीहत आरटीओ श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा ने दी। उन्होंने कहा कि जब दुर्घटनाएं घटित होती हैं तब तब चालकों का, क्लीनर का या टिकट चेकर का व्यवहार उस दर्जे का नहीं होता जिस दर्जे का व्यवहार होना चाहिए। इसलिए व्यवहार में सुधार और बोलचाल में मिठास लाने की नसीहत आरटीओ श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा ने दी। कलेक्टर श्रीमान अर्पित वर्मा ने कहा कि हम सवारियों की जिला प्रशासन आरटीओ और यातायात विभाग ने जब मंगलवार सुबह पड़ताल की तो पाया कि जो बस अहमदाबाद के लिए निकली थी उसमें यात्री बीच गैलरी में ऐसे लेटे हुए थे मानो सामान भरा हुआ हो। इस फोटो को दिखाकर जब उन्होंने बस संचालकों से हाथ खड़े कराए तो कहा, क्या ये हालात आप देखते हैं? इससे सबक लेने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से बस संचालकों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से माखौल आप बस संचालन का उड़ाते रहे तो फिर अनय जैन जैसे हादसे होते रहेंगे, और यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं तो फिर आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इस एक घटना से आप नसीहत ले लें कि भविष्य में किसी भी तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए 7 दिन का अल्टीमेटम सभी बस संचालकों को दिया गया और कहा गया कि यदि इन 7 दिनों में आप यातायात नियमों के साथ बस संचालन की जो प्रक्रियाएं हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र है, अग्निशमन यंत्र रखने का काम है, एग्जिट गेट है आदि आदि व्यवस्थाओं को आपको बनाना होगा, और 7 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं बनी तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी और कार्रवाई के आप हकदार बनेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई से बस संचालक तभी बच सकेंगे अब जब वो निर्धारित मापदंडों को पूरा करेंगे। इस नसीहत के बाद एक और पहल की गई कि आम तौर पर जब बस में दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो या तो फायर एक्सटेंशन होता ही नहीं है, और यदि होता भी है तो फिर उसमें उसको चलाने की ट्रिक, चलाने की कला नहीं मालूम होती। तो इसका प्रशिक्षण अब शनिवार रविवार को आरटीओ श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा की पहल पर दिया जा रहा है, जिसमें 2 दिन के इस प्रशिक्षण में बस संचालकों को अपनी पूरी टीम के साथ ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर जो बस में चलते हैं उन्हें बताया जाएगा कि दुर्घटना जब घटित होती है तो उसमें फायर एक्सटेंशन का उपयोग किस तरह से करना है, कैसे उसको खोलकर अग्निशमन यंत्र को हिलाना है, फिर तिरछा करके उसको कैसे चलाना है। ये प्रैक्टिकल परीक्षण देकर के, प्रशिक्षण देकर के उन्हें दक्ष बनाया जाएगा ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटनाएं ना घटे। तो ये तो हो गई बस संचालकों की बात और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाओं की। श्रोताओं, हमारे जो प्राकृतिक सरोवर, जो प्राकृतिक निर्झर प्राकृतिक झीलें जो शिवपुरी में विद्यमान हैं, शिवपुरी में बनी हुई हैं, इनमें अक्सर महसूस किया गया है कि 2018 के पहले तक जलकुंभी या तो होती ही नहीं थी, और होती भी थी तो वो है पानी के साथ, गंदे पानी के बहाव के साथ निकल जाती थी। लेकिन पिछले लंबे समय से यहां पर जलकुंभी बढ़ती जा रही है, चाहे वह जाधव सागर हो, चाहे वह सांख्य सागर झील हो, चाहे माधव लेक हो, इन सब में

पानी के साथ हम वर्तमान में बड़ी जलकुंभी देख रहे हैं, और इससे बचने का तरीका यही है कि हम गंदगी का बहाव इन जगहों पर ना रखें। और जब इस मामले में लगी पीआईएल के बाद हाईकोर्ट ने पीआईएल के रिपोर्ट के आधार पर एक कमिश्नर टीम गठित की और उसका दल शिवपुरी, तो उस दल ने मौका मुआयना किया और पाया कि जो हाइड्रोलिक गेट लगा हुआ है झील के पास में, वहां से पानी का बहाव, तेज पानी का बहाव तो निकल जाता है लेकिन रूटीन में पानी निकलने की स्थिति नहीं रहती, इसलिए इस हाइड्रोलिक गेट को बंद करने का सुझाव कई लोगों ने इस टीम को दिया। अब प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है, कोर्ट में क्या जवाब प्रस्तुत होता है, फिर कोर्ट के डिसीजन के बाद ही वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। लेकिन जलकुंभी रोकने के लिए ये जो पहल की गई, निश्चित रूप से ये शहर के सौंदर्यीकरण को बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इस दिशा में एक बेहतर कदम साबित हुआ। अब हम इस खबर के साथ बात कर लेते हैं कुछ और उपयोगी जानकारियों की। श्रोताओं, आज यदि आप बाजार जा रहे हैं तो बीमारी की हालत में हैं और दवाएं आपको खरीदना है, तो बाजार के जो प्राइवेट मेडिकल हैं वो सब बंद रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में देश भर में की गई अपील के बाद जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा शिवपुरी में भी बंद का आयोजन है, जिसके तहत आज पूरे 24 घंटे दुकानें, मेडिकल स्टोर्स की बंद रहेंगी। इसके तहत आपको जो दवाइयां मिलेंगी वो या तो नर्सिंग होम के पास संचालित होने वाले मेडिकल स्टोर से, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में संचालित होने वाले मेडिकल स्टोर से मिल पाएंगी। हालांकि मेडिकल स्टोर की जो टीम है, जिला केमिस्ट एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सीपी गोयल, मंत्री या सचिव गोपाल दास अग्रवाल और कोषाध्यक्ष अमन गोयल जी ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में यदि मरीजों को कोई जीवन रक्षक दवा चाहिए तो वह हमारे मेड से संपर्क करें, हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन दवाओं का विक्रय का जो प्रचलन कोरोना के समय से चलता आ रहा है और उसके बाद इसे रोका नहीं गया है, बंद नहीं किया है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन देश भर में है, इसलिए शिवपुरी में भी जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से ये एक बाजार में लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हम भी आपको इन सूचनाओं से अवगत करा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जनगणना की। श्रोताओं, जो जनगणना का काम है मंगलवार तक 95% पूर्ण हो चुका है और इसमें कई नगर पंचायतें तो ऐसी हैं जिन्होंने 100% काम पूरा कर दिया, कई ग्राम पंचायतों से अर्थात जनपदों के माध्यम से भी 100% लक्ष्य हासिल हुआ है। हालांकि कलेक्टर अर्पित वर्मा जी ने आज 20 तारीख तक जनगणना का काम पूरा करने के निर्देश दे के 3386 प्रगणकों को दिए थे और कहा था कि वो इस समयावधि के दौरान ही जनगणना का काम पूरा करें। अब हालांकि आज डेडलाइन है और इस डेडलाइन में कर्मचारी निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ये प्रयास जनगणना के कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे। लेकिन जो जनगणना के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, हालांकि इसके फाइनल आंकड़े तो रिपोर्ट जारी होने के बाद प्रस्तुत हो पाएंगे, लेकिन जो जनगणना जहां पूरी हो गई है उसके बाद आंकड़े जो तैयार हुए हैं उसके अनुसार शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 39, वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 37, यहां पर लगातार 2011 की तुलना में न केवल मकान बढ़े हैं और शहर में सबसे अधिक आबादी भी इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ी है, क्योंकि नई कॉलोनी, नई बसाहट यहाँ बन जाने से एक नया बदलाव आया है। तो ये एक उपयोगी जानकारी हमने आपसे शेयर की। श्रोताओं, हमें दीजिए इजाज़त।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे नमस्कार शिवपुरी। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात दिल्ली से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक दिल्ली पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने

0: कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्यघर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा

0: करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है।

0: नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं तेरी कसम फिल्म का ये गीत, अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी रचना, आरडी वर्मन का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है मंटू अवस्थी, भानु अवस्थी, केदारी अवस्थी, याशा अवस्थी और दिव्यांगी अवस्थी ने देहात थाना के पास पुरानी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: पर और उसके अंतर्मन की
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड,
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का, आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म आंखियों की झरोखों से, इस फिल्म का ये गीत रविंद्र जैन की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। जीवन से जुड़े चेतना को प्रकट करता हुआ ये गीत सुनने की फरमाइश भेजी है प्रदीप गुप्ता भैया जी पौहरी, पप्पू शटेले और इनके बहुत सारे साथियों ने। और आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

रविंद्र जैन का गाया, उन्हीं का लिखा और उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अनीता फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां की लिखी ये रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है जयपाल जाट, मुन्ना जाट, भवानी जाट, केदारी जाट, नंदू जाट और सुंदरी जाट ने, कोलारस जिला शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का, फिल्म अनीता का

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफ एम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म बेटा का ये गीत। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों ने, समीर की लिखी रचना, आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है नीलगर चौराहे के पास शिवपुरी से गौतम सेन, भानु सेन, पांडू सेन, बबलू सेन, गुड्डा सेन और इनके बहुत सारे साथियों ने, और इसी गीत को सुनना पसंद किया है दिनेश योगी, ममता योगी, कांता योगी, सुनील योगी और सुनैना योगी ने, तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का, इस फिल्म का ये गीत।

श्रोता आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, समय हुआ है कार्यक्रम लोकरंग का। लोकरंग में आज कलाकार हैं उत्तम सिंह कुशवाहा और राजीव कुमार रावत। आइए सबसे पहले सुनते हैं उत्तम सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीतों को, सुनते हैं उनका

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, और लोकरंग में कलाकार हैं उत्तम सिंह कुशवाहा। अभी आप सुन रहे थे उनका गाया ये लोक भजन। आइए उनका सुनते हैं गाया ये दादरा लोकगीत, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ओह लवली, वेल डन,
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

कार्यक्रम लोकरंग में आप सुन रहे थे उत्तम सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीतों को। आइए अब सुनते हैं राजीव कुमार रावत के गाए लोकगीतों को। सबसे पहले सुनते हैं उनका गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग में। लोक कलाकार उत्तम सिंह कुशवाहा और राजीव कुमार रावत के गाए लोकगीतों को एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। समय हुआ है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले डकैत फिल्म का ये गीत। इसे गाया है आशा भोसले, सुरेश वाडकर, किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की लिखी ये रचना और संगीत राहुल देव वर्मन का है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

हाथी मेरे साथी। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में फरमाइशी फिल्मी गीतों में लीजिए सुनिए देव फिल्म का ये गीत। इसे गाया है कैलाश खैर महुआ कामत, श्रद्धा पंडित ने निदा फाजली की लिखी रचना, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है आदिश जैन, गुल्लू जैन, अगम जैन और इनके बहुत सारे साथियों ने, मंगलम लॉज महल कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का, इस फिल्म का

श्रोताओ आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झील के उस पार। जी हां, इस फिल्म का ये गीत इसे गाया है किशोर कुमार ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन राहुल देव वर्मन की। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है डॉक्टर सुशील वर्मा, दिनेश जैन, राजेश जैन, डॉक्टर MD गुप्ता और इनके बहुत सारे रोटरी क्लब मित्र मंडल ने। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

जब सब देखेगी हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार तू सब जब

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी फरमाइश। झील के उस पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति ने, जावेद अख्तर की लिखी ये रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है मनोज कुमार, अल्पेश कुमार, ज्योति कुमारी और अंजना कुमारी ने, महल कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

0: हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ नागरिकों को जाग कराने और
1: श्रोता आप सुन रहे थे फिल्म संगीत और डीजे सुनिए सुबह का समय हुआ है जिले की चिट्ठी का आयोजित
0: संदेशों के जरिए जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। बुरहानपुर में प्रस्तावित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से बीते दिनों चर्चा की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास के नए क्लस्टर बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने तैयारियों का प्रेजेंटेशन देकर भरोसा जताया और उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए, जिससे साझेदारी पर आधारित विकास रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि और आमजन अमल में लाए हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से महानगरी एक्सप्रेस पकड़कर खंडवा के लिए रवाना हुए। गांव बोहरडा से स्टेशन तक ईवी कार से पहुंचे और फिर रेल यात्रा की। उन्होंने निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक यातायात अपनाकर ईंधन बचत का संदेश दिया है। बुरहानपुर जिले की खकनार पुलिस ने यातायात सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रभारी अभिषेक जाधव और उनकी टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हा दुल्हन को हेलमेट भेंट करने का अभियान शुरू किया। ऐसे ही क्षेत्र की दर्जनों शादियों में पहुंचकर पुलिस बारातियों को यातायात सुरक्षा का संकल्प दिला रही है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी डैम रोमांच और रेस्क्यू की असली पाठशाला बन गया है। आपदा प्रबंधन के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन दूसरे सत्र में SDERF होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 32 जवानों ने पानी के बीच जीवन बचाने की बारीकियां सीखी। तेज धूप और लहरों के बीच जवानों ने तैराकी, बोट संचालन, डूबते व्यक्ति तक फुर्ती से पहुंचने और सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक का अभ्यास किया। दूध की धार बढ़ाने के उद्देश्य से क्षीरधारा योजना के तहत पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत टीकाकरण, नस्ल सुधार और आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर बुरहानपुर जिले में पशुपालन को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना ने जोर पकड़ लिया है। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन विभाग की टीमें अब गांव-गांव दस्तक दे रही हैं। वहीं बांझपन से जूझ रहे पशुओं के लिए विशेष शिविर, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर नस्ल तैयार करने पर खास फोकस किया जा रहा है। बुरहानपुर का करीब 195 वर्ष पुराना स्वामी नारायण मंदिर इन दिनों पुरुषोत्तम मास में भक्ति से सराबोर है। यहाँ रोजाना प्रभु लक्ष्मी नारायण देव का सैकड़ों लीटर दूध, दही, केसर, पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि सन 1882 से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर महिलाओं द्वारा प्रतिदिन रेल यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की समाजसेवी महिलाएं रोजाना समूह बनाकर स्टेशन पहुंचती हैं और ट्रेनों में सवार यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर सुकून का एहसास कराती हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित जनजाति बाहुल्य 116 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर विशेष संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में शासन की विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से गांव-गांव कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम दवाटिया में आयोजित कृषि चौपाल में किसानों को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जन जागृति संस्था बुरहानपुर द्वारा नर्सेस डे के उपलक्ष्य में बुरहानपुर क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में कार्यरत महिला एवं पुरुष नर्सेस का सम्मान समारोह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. LDS फुनकवाल, जन जागृति संस्था के संरक्षक एवं संस्थापक महेंद्र जैन और संस्था अध्यक्ष डॉ. किरण सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने TL बैठक में बीते दिनों निर्देश दिए कि नॉन अटेंडेड शिकायतें पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने, जमीनी स्तर पर समस्याओं की जानकारी लेने और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग को अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।
1: एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह और गुलाम अली। आइए श्रोताओ सुनते हैं जगजीत सिंह और गुलाम अली की गाई इन गजलों को। सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज कलाकार हैं गुलाम अली और जगजीत सिंह। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह के

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में जगजीत सिंह और गुलाम अली को। लीजिए सुनिए गुलाम अली के स्वर में ये गजल, रचना हबीब की है, संगीत गुलाम अली का।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में जगजीत सिंह और गुलाम अली की गाई गजलों को। एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। समय हुआ है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आइए सुनते हैं सौरभ गौड़, ममता गौड़, आकांक्षा गौड़, निर्मला गौड़, सुप्रिया गौड़ और कुमकुम गौड़ की पसंद का फिल्म अगर तुम न होते का ये नगमा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ
0: अपना।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। आइए आप सुनते हैं बगावत फिल्म का ये गीत। इसे गाया है आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी की लिखी रचना और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है मनकू अवस्थी, भानु अवस्थी, केदारी अवस्थी, जयपाल अवस्थी और देवकी अवस्थी ने, देहात थाना के पास शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अभी आप सुन रहे थे बगावत फिल्म का ये गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार मुकेश लता रफी की आवाज में। आनंद बख्शी की लिखी रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है जाहिद मोहम्मद खान, शराफत खान, आफताब खान और इनके बहुत सारे साथियों ने कल्लन सोप फैक्ट्री के पास पुरानी शिपरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: श्रोतो, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी देर में विविध भारती का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: नमस्कार, फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, जीवन कभी समुद्र की लहरों सा ऊंचा उठता है तो कभी चुपचाप किनारों से टकराकर बिखर जाता है। कभी समय की धूल मन के आईने पर जम जाती है तो कभी कोई मधुर सी धुन उसे फिर से चमका देती है। संगीत वो बारिश है जो भीतर सूखती संवेदनाओं पर धीरे धीरे उतरती है और फिर सब कुछ हरा हो जाता है। संगीत वो दीपक है जो थके हुए मन के अंधेरों में भी उजाला रख देता है। संगीत वो खुशबू है जो बीते हुए सुनहरे पलों को फिर से जिंदा कर जाता है, हमारे जीवन को महका जाता है। तो आइए सुरों की इसी रेशमी छाँव में कुछ पल गुजारते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है फोन करें, गीत सुनें। आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें, आपकी चाहतें गुनगुनाता एक हसीन सा सफर। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से।
2: दीदी, राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं?
3: बहुत धन्यवाद दीदी, बढ़िया हूँ मैं। यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, मेरे पास दो रेडियो भी, 4-5 रेडियो रखता हूँ मैं, जैसे अलग अलग स्टेशन सुनता हूँ। विविध भारती है, भोपाल है, इंदौर है,

0: से करीब 40-45 वर्ष हो चुके हैं मुझे।
1: क्या बात है, तो आप हमारे
0: जी सर
1: पुराने
0: जी,
1: और नियमित श्रोता हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं राजू जी?
0: कार्यक्रम ज्यादातर हम ये फरमाइश कार्यक्रम से ज्यादा हम मतलब वो रहते हैं, चुट्टियों के फोन इन कार्यक्रम।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: जैसे
1: और अब हम जानना चाहते हैं कि गीत कौन सा सुनेंगे आज?
0: आज गीत अमर अकबर इन्होंने पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, अनहोनी को होनी करके, होनी को अनहोनी, किशोर दास, एलन सिंह और महेंद्र कपूर की आवाज में है ये गीत,
1: क्या बात है।
0: और आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया हुआ गीत है, मनमोहन देसाई साहब की फिल्म।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सारे क्रेडिट्स याद हैं। अक्सर लोग गायक कलाकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन जो गीतकार और संगीतकार हैं
0: बिल्कुल,
1: उनको लोग याद नहीं
0: मैं
1: रखते।
0: तो हमको खजाना ही दे रखा है ना
1: जी जी
0: दीदी।
1: जी चलिए राजू जी, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। यूं ही आकाशवाणी से अपना प्रेम बनाकर रखिए। आपने हमें फोन किया,
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से। जी,
0: अरे वाह हसीना जी, बहुत बहुत
1: आपका
0: स्वागत
1: भी
0: है
1: बहुत
0: आपका।
1: आपसे बात करने के लिए बहुत दिल बेताब था मैडम।
0: हमारा भी मन बेचैन रहता है अपने श्रोताओं से बात करने के लिए। कैसी हैं आप?
1: जी, अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी, अच्छे ही रहना चाहिए। जी
0: बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
1: जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा मैडम, क्योंकि आप लोगों से तो हम लोग जुड़े हुए हैं।
0: जी। तो आज कौन सा गीत सुनेंगी हसीना जी?
1: इम्तिहान फिल्म का नाम और गाने के बोल हैं।

0: उड़ जाऊंगा, ये सुना दीजिए।
1: वाह वाह वाह, सुरीली सी फरमाइश आपने की है। संगीत यूं
0: जी
1: ही आपकी जिंदगी में बना रहे और आपको खुश करता रहे, आपको निश्चिंत करता रहे, आपको स्वस्थ करता रहे, ये कामना है हमारी हसीना जी।
0: जी जी जी
1: बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित एवं करीब 16 साल पुराना श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अमित तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में।
1: जी जी, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सिंह बात कर रही हैं शायद?
0: हाँ
1: आप
0: जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: जी
0: आपने
1: जी, आपसे बात करके जी मान के चलिए कि हमारा सौभाग्य था जी, जो आपसे आज हमारी बात काफी समय के बाद बात हो रही है आपसे हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। अमित जी, आपने बताया कि आप 16 साल पुराने श्रोता हैं, तो
1: जी
0: कौन
1: जी
0: कौन से
1: मैं बहुत समय
0: कार्यक्रम
1: से सुना
0: आपको
1: जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी कौन कौन से कार्यक्रम विशेष रूप से आपको पसंद है?
1: जी जी आपके यहाँ से ग्राम सभा कार्यक्रम हो, युगवाणी कार्यक्रम हो, और जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम आता है वो भी, और एक मैम बहुत समय पहले एक आता था गुरुवार को मेरे ख्याल से, जिसका नाम था बात पते की लात पते की, जो
0: जी जी जी
1: कार्यक्रम
0: जी
1: इस पर चलता था, बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता था। शुक्रवार को हेलो ग्राम सभा भी कार्यक्रम जाता था 7:30 के करीब, तो ये मान के चलिए कि उसी समय से सुन रहा।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत
1: जी
0: से
1: जी और
0: कार्यक्रमों का आपने नाम
1: एक
0: बताया।
1: कार्यक्रम और जाता था आपके यहाँ से हरियाली और खुशियाली, संडे को जाता
0: हाँ,
1: था,
0: जी
1: जो
0: जी जी
1: हमारे सुभाष सक्सेना जी
0: हाँ
1: जिसकी प्रस्तुति देते थे।
0: जी जी जी तो आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अमित जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, आप सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम रहेगा मुजरिम, और इसमें जो है मोहम्मद अजीज साहब की बेहतरीन आवाज है, वो गीत के बोल रहेंगे। मुजरिम ना कहना मेरे लोगो, ए मुजरिम तो सारा जमाना है। जी
0: बहुत ही सुंदर, आपने गुनगुना कर अपनी फरमाइश बताई।
1: हमारे अनु भट्टाचार्य जी हैं और प्रेमदास बाबा जी हैं, इन दो लोगों के लिए पुराने श्रोता हैं, यह गीत देरी के रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमें फोन किया, आप तक भेजते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है ये। हमारे कौन से
1: जी
0: श्रोता बोल रहे हैं?
1: सोनू तंदुआ बोल रहे मैडम,
0: सोनू
1: आपके
0: जी
1: पुराने श्रोता है मैडम, मैं कई बार फोन लगा चुका हूँ
0: कहाँ से बोल रहे
1: आपके।
0: हैं?
1: जिला दमोह से बोल रहा हूँ, ग्राम पटेरिया।
0: तो सोनू जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम, बस
0: क्या
1: गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है तापमान यहाँ
0: बहुत ज्यादा गर्मी
1: का,
0: है इस साल। तो क्या उपाय
1: बहुत तेज
0: करते हैं
1: गर्मी
0: आप,
1: पड़ रही है मैडम।
0: क्या उपाय करते हैं बचाव के लिए?
1: बचाव के लिए मैडम वो उपाय तो क्या है, ये पानी यानी पीते रहते हैं और ज्यादा ज्यादा छाए में रहते हैं, धूप में निकलते नहीं है, घर पे ही रहते हैं।
0: बहुत तेज गर्मी है, तो इस
1: हाँ
0: गर्मी
1: मैडम,
0: में कुछ सुकून जो मिलता है वो संगीत से मिलता है।
1: हाँ बस सुकून यही, अपना रेडियो सुनते रहते हैं,
0: जी
1: रेडियो है DTH के माध्यम
0: जी
1: से।
0: जी
1: लावारिस
0: जी कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: फिल्म का,
0: गीत के बोल बताइए।
1: काहे पैसे पे इतना गुरूर किए हैं।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी राकेश वर्मा बोल रहा है, बसाई दरवाजा से, छतरपुर से।
0: राकेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे
1: जी
0: हैं?
1: बढ़िया है दीदी जी। आपके प्रोग्राम मध्य प्रदेश के 11 बजे से मतलब सुनते हैं और 3 बजे तक तो आपका कार्यक्रम चलता ही है।
0: जी जी जी
1: और बहुत पुराने श्रोता है अपन मध्य प्रदेश भोपाल के।
0: अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी धर्मवीर का सुनेंगे साहब।
0: गीत के बोल बताइए।
1: सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी,
0: वाह वाह
1: टूटे
0: वाह,
1: से न टूटे धर्मवीर की
0: धर्मवीर
1: जोड़ी।
0: की जोड़ी, बिल्कुल।
1: भाई क्या है कि हम जो है मध्य प्रदेश से दोस्ती बनाए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में और हमारे जो मित्र हैं उनका
0: जी
1: नाम ले सकते हैं क्या?
0: जी जी जी
1: कल्पा सतना से हैं चान मोहम्मद खान और बांदा से हैं दिनकर जी।
0: तो चलिए, आपकी जो ये धर्मवीर की जोड़ी है ये तो बनी ही रहे। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आपकी जो जोड़ी है वो भी धर्मवीर की जोड़ी है, और ये भी सलामत रहे। तो चलिए, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। पर थोड़े से भाई टूटे ना।

0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। हेलो नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं विजय पांडे थाना पछवाड़वा जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे काल को तस्लीम किए। मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगा।
0: जी जी
1: पेड़ से फूल लाखों गिरते।

0: हैं, उठाता है कोई कोई, मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई।
1: क्या बात है।
0: आदर काबिले अदब मोहतरमा सुनीता साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
1: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। विजय पांडे जी, आपने अपने अंदाज में इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है, बहुत ही सुंदर अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि गाना कौन सा
0: जी,
1: सुनेंगे आज?
0: इसी पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।
1: हाँ जी।
0: कहा गया है कि मोहब्बत एक ऐसा फूल है जिसे कोई एक बार सूंघ लेता है तो जिंदगी भर उसकी खुशबू को नहीं भूलता।
1: बिल्कुल।
0: मोहब्बत में इतनी ताकत है कि सुनसान रास्तों और वीरान इलाकों को भी आबाद कर सकती है।
1: क्या
0: मोहब्बत
1: बात है।
0: वो पाक लफ्ज है, कुदरत ने शायद इसीलिए मोहब्बत में इतनी मिठास रखी है कि दुश्मन को भी आसानी से खत्म किया जा सके।
1: जी।
0: मोहब्बत इंसान को इंसानियत का तरीका बताती है।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत चाहे किसी से भी हो,
1: जी।
0: जज्बात मोहब्बत नेक होना चाहिए। मोहब्बत माँ बाप बहन भाइयों वतन दरख्तों यहाँ तक कि एक पहाड़ से उखड़े हुए पत्थर से भी हो सकती है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत जैसे जज्बे को बदनाम करते हैं।
1: वाह, क्या बात है विजय पांडे जी, आपने बहुत खूबसूरत विचार रखे। और वास्तव में प्रेम जो है वो इस संसार की हर समस्या का समाधान है। देखिए,
0: जी
1: आज युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा है, ऐसे समय में मोहब्बत का ये पैगाम बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत
0: जी
1: ही
0: जी
1: शुक्रिया
0: जी
1: हम अदा करते हैं आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विचार भी रखे। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
0: फिल्म का नाम है प्रेम रोग
1: जी।
0: और गीत के बोल है मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ।
1: वाह, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: जी, सुनीता मैम जी को नमस्कार। मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
1: अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
0: चित्रकूट से बोल रहा हूँ, वैसे हूँ श्रीनगर जिला महोबा का। जी,
1: अच्छा, इस वक्त चित्रकूट में हैं। कैसे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
0: घूम रहे हैं चित्रकूट में, शुरुआत
1: इतनी गर्मी में?
0: पर है जी,
1: इतनी गर्मी में?
0: थोड़ा है इमरजेंसी थी तो गए।
1: अच्छा, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि धूप बहुत
0: जी
1: तेज है ना, गर्मी
0: जी
1: बहुत ज्यादा है, तो ख्याल रखिएगा अपना। और
0: जी
1: बताइए कि आज
0: धन्यवाद।
1: फरमाइश क्या है आपकी?
0: जी, फिल्म का नाम रहेगा ये रास्ते हैं प्यार।
1: गीत के बोल।
0: मेरा दिल था एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा, छुट्टी
1: मेरा दिल था
0: की
1: एक
0: भीड़।
1: खाली
0: जी
1: कमरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा अरविंद जी कि आपने फोन किया चित्रकूट से। आपका काम
0: जी
1: सफल हो ये हमारी कामना है आपके लिए। और आप
0: बहुत
1: तक
0: दिनों
1: भी
0: बाद आपसे बात हुई है मेरी।
1: जी, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
0: जी, आपका भी धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: जसराम यादव।
0: कहाँ से बोल रहे हैं जसराम जी?
1: जोराई से।
0: जोराई, ये कहाँ पड़ता है?
1: जिला शिवपुरी।
0: शिवपुरी। कैसे हैं? जी जी, कैसे हैं?
1: हम बढ़िया मैडम।
0: और याद किया आपने आकाशवाणी मध्य प्रदेश को तो आकाशवाणी की याद किस तरह से बनी रहती है?
1: आकाशवाणी की याद तो बनी रहती है मैडम, क्या इसमें अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं सुनने के लिए, अच्छी बातें मिलती हैं सुनने के लिए।
0: तो इन बातों का आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है कभी?
1: हाँ हाँ मैडम।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप आकाशवाणी सुनते हैं और जो बातें आप तक पहुंचती हैं उन्हें स्वीकार भी करते हैं, अपनाते भी हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा होता है।
1: पहले क्या रेडियो सुनते थे, अब मोबाइल पर सुनते हैं मैडम।
0: हाँ, माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन बातें पहुंचती हैं और असर करती हैं, ये बड़ी बात है। कौन सा गीत सुनवा दें आज?
1: दिल वाले कुछ कर का।
0: गीत के बोल बताइए।
1: जीता हूँ जिसके लिए मरता था, एक ऐसी भी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था।
0: अच्छा, तो चलिए ये गीत आप तक भेजते हैं जसराम जी। इसी तरह आकाशवाणी के साथ अपना प्रेम बनाकर रखिए। आज आपने फोन किया
1: मैडम, दोस्तों का नाम लेना चाहता मैडम। हमारे दोस्त हैं मनपुरा के मंची मनोज नामदेव, मंची नामदेव, अर्जुन जाटव, श्याम बरन जाटव।
0: इन सारे दोस्तों के साथ मिलकर आप सुनना चाहते हैं दिलवाले फिल्म का गीत?
1: हाँ मैडम।
0: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं और आप सभी दोस्त मिलकर इसका आनंद लीजिए। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: मैं निखिलेश अहरवार, ग्राम चीखली, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा।
0: मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज आपकी पसंद का कोई भी अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए।
0: अरे वाह, हमारी पसंद का गीत। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि जिंदगी में इंसान हर जगह अपनी पसंद चाहता है ना? चाहे कपड़े हो, खाना हो, दोस्ती हो, फिल्म देखना हो, हर जगह अपनी पसंद हम चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है,
1: चीज ऐसी है कि कुछ आपकी पसंद का भी हो, कुछ हमारी पसंद का, मिला जुला चलता रहता है। अच्छा
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: तो ये जो मिला जुलापन है ये जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो चलिए मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी।
1: खुशी हुई मुझको भी।
0: हाँ जी बहुत धन्यवाद। भेजते हैं अपनी पसंद का गीत आपके लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

दोस्तों, संगीत की ये महफिल अब यहीं थमती है, लेकिन सुरों की ये नर्म रोशनी आपके मन में यूं ही बनी रहे। जब भी जीवन की राहें आपको थकाने लगें, जब भी समय की धूप कुछ ज्यादा तीखी लगे, तो किसी गीत की छाओं में कुछ पल बैठ जाइए, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, मरहम भी है। वो मन को फिर से जिला देता है। तो संगीत के इसी मधुर एहसास के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। फिर मिलेंगे नई धुनों, नई फरमाइशों के साथ, नए रंगों से सजी एक खूबसूरत महफिल में। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। ग्राम रोजगार सहायकों का महापर्व और राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन आज दोपहर राजधानी भोपाल में होगा। महासम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबोधित करेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार अब श्रद्धालु 500 रुपए का शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले तीन दिन प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म अजनबी से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन। और इस गीत के लिए फरमाइश अमरावती महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, शाहिद। अगले श्रोता फ्रेंसी गांव से हैं। राजकुमार, सरजीत, प्रमोद, राजू, बबीता, सुभाष और डब्बू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म हम आपके हैं कौन। गीतकार देव कोहली, संगीतकार राम लक्ष्मण। श्रोता, जिन्होंने फरमाइश हमें की है वो पंजाब से हैं, रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से हैं, राजेश, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सोल्जर से। गीत को सुरों से सजाया अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता हैं राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ज्वेल थीव से। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार ने, गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार एसडी बर्मन। फरमाइश हमें आई है जयराज प्लॉट राजकोट से, श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म फिजा से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है पाकुड़ झारखंड से। श्रोता हैं उत्तम कुमार, श्वेता, किशु और ताशु। अगले श्रोता पटियाला से हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल।

0: की पहचान हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार श्रोतागण, पंचतंत्र के इस महासमुद्र में कई सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं पंचतंत्र का द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति। इसे पंडित विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को कुछ यूं सुनाया। असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः,
1: असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः, साधयन्त्याशु कार्याणि काकाकुमृद् कूर्मवत्। प्रिय वत्सगण, विद्वान बहुश्रुत एवं बुद्धिमान साधनों के अभाव में भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कौवे, चूहे, हिरण और कछुए ने मिलकर अपने कार्यों को सिद्ध कर लिया। लो सुनो, दक्षिण के किसी राज्य में एक विशाल सा वृक्ष

0: जिसके फलों को पक्षी मुक्त रूप से खाया करते थे। उसके कोटर में अनेक कीट निवास करते थे। दूर दूर से आने वाले पथिक उस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम किया करते थे। उसी वृक्ष की एक शाखा पर लघुपतनक नाम का एक कौवा निवास करता था। एक बार वो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था।
1: दिन चढ़ा आया, अभी तक एक दाना भी नहीं जुटा पाया। भूख के कारण दशा दयनीय हो रही है। अरे अरे, ये क्रूर ऊर्ध्वकेश यम के आकार का कौन मनुष्य इधर आ रहा है? ये तो बहेलिया है। ये दुष्ट अवश्य ही मेरे वटवृक्ष की ओर आ रहा है। हे प्रभु, ये मेरे साथियों को जाल में फंसा लेगा। मैं शीघ्र जाकर उन्हें सावधान करता हूं। मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। एक दुष्ट बहेलिया अपने हाथ में जाल एवं चावल के दानों को लेकर इधर आ रहा है। तुम लोग उस पर विश्वास ना करना। चावल के दानों को विषमय जानकर उस पर दृष्टिपात मत करना।
2: लघुपतनक पक्षियों को चेतावनी दे ही रहा था कि बहेलिया उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया, फिर जाल फैलाकर चावल के दानों को बिखेर दिया और चुपचाप बैठ गया। लघुपतनक के मना करने के कारण पक्षियों में से कोई भी नहीं गया। परंतु इसी बीच चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अपने साथियों सहित इधर उधर घूमता हुआ चावल के दानों को देखने लगा।
1: हे प्रभु, कहीं ये जाल में न फंस जाए।
3: भाई कपोतराज, वहां ना जाए, उधर जाल बिछा है। अरे अरे अरे अरे, ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे भाई सुनिए, ओहो, वो सब तो जाल में फंस ही गए। दुष्ट बहेलिया कहीं का।
4: मेरे कपोत वृंद, बहेलिये के आगमन से आप सब डरे नहीं। विपदा के समय भी हमें अपनी बुद्धि एवं साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम लोग आपस में मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलें, तो हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबकी मृत्यु निश्चित है। चलो
5: हम सब इस जाल को ले उड़ते हैं।
1: आश्चर्य, महाआश्चर्य, पारस्परिक संगठन से सब कुछ हो सकता है। अरे देखो तो, वो मूर्ख व्याध कैसे पीछे पीछे दौड़ रहा है। चलो मैं भी चलकर देखता हूं कि ये कहां जा रहे।
4: मित्रगण, वो बहेलिया तो थककर लौट गया। अब इस जाल को महिला रौप्य नगर के ईशान कोण की ओर ले चलते हैं। वहां हिरण्यक नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, वो हमें जाल से मुक्त करा देगा। चलो। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हिरण्यक का विवरण है। मित्र हिरण्यक, मुझ पर बड़ी विपत्ति की स्थिति आ गई है।
6: मित्र हिरण्यक,
7: ये आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आपके आगमन का कारण एवं विपदा की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहें तो जरा।
4: मित्र, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र कपोतों का राजा चित्रग्रीव हूँ। शीघ्र ही विवरण से बाहर आओ।
7: हे तात, सूर्योदय, पान, रामायण तथा महाभारत की कथा, प्रिय स्त्री तथा अच्छा

चित्र हर दिन नई वस्तुओं के समान सुखकारक होते हैं। जिसके घर प्रतिदिन स्नेही मित्र आते हैं, उन मित्रों को देखकर जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी वस्तु को देखने से नहीं होता। परंतु

0: हे अनुचरों को पाश मुक्त करो, उसके पश्चात मुझे।
1: महाशय, ये आपने उचित नहीं कहा, क्योंकि स्वामी के बाद ही भृत्यों का स्थान आता है।
0: भद्र, ऐसी बात ना कहिए, ये सभी मेरे आश्रित हैं, ये अपने अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, क्या मैं इनका इतना भी सम्मान नहीं कर सकता? जो स्वामी अपने अनुचरों को सदा सम्मान देते हैं, उनके सेवक गण अर्थाभाव होने पर भी उन्हें नहीं छोड़ते। और दूसरी बात ये कि कदाचित मेरे पाश को काटते समय तुम्हारे दांत ही टूट गए या वो बहेलिया ही लौट आया, तो इनके बंधे रह जाने से मेरा नरकवास निश्चित है।
1: धन्य महाशय, धन्य है। महाशय, मैं राजधर्म को जानता हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। जो राजा भृत्यों के प्रति करुणा का व्यवहार करता है, वो राजा तीनों ही लोगों की रक्षा करता है। आप निश्चिंत रहें, मैं पहले इन्हीं के पाश को काटूंगा।
2: ये अद्भुत घटना है, हिरण्यक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों ही है। वाह, मोक्ष का ये बहुत अच्छा उपाय है। यद्यपि मेरा स्वभाव चंचल है, फिर भी मैं इसे मित्र बनाऊंगा। इसने पूरा जाल कितनी सफाई से काट दिया, अब ये कबूतरों का झुंड चला जाए तो मैं हिरण्यक से मिलूं। लो, ये तो उड़ गए। अब मैं विवर्ण के पास जाता हूँ। मित्र हिरण्यक, बाहर आ जाओ, अरे शीघ्र आओ।
1: ये किसकी आवाज है? क्या कोई कपोत अभी भी फंसा रह गया है? महाशय, आप कौन है?
2: मैं लखुपतनक नाम का काक हूँ, एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूँ।
1: मुझे आपसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से शीघ्र चले जाएं।
2: आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? मैंने आपको चित्रग्रीव के बंधनों को काटते हुए देखा है, तभी से मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हो गया हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार कर लें।
1: नहीं नहीं महाशय, बिल्कुल नहीं। परस्पर विरोधी स्वभाव वालों में भला मित्रता कैसी? आप भक्षक हैं, मैं हूँ भक्ष। मैत्री और शत्रुता बराबर वालों में ही शोभा देती है, सबल और निर्बल में मित्रता कैसी भला?
2: मित्र हिरण्यक, मैं आपके द्वार पर बैठ गया हूँ, यदि आप मुझसे मित्रता नहीं करेंगे तो यहीं पर प्राण दे दूंगा मैं।
1: अरे देखिए महाशय, अत्यंत घनिष्ठ होने पर भी शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल चाहे जितना भी गर्म हो, वो आग को बुझा ही देता है। फिर आपका और हमारा तो स्वभाव गद्दार है।
2: अरे भाई, अभी तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिला, तो बैर कहाँ से हो गया? मेरे साथ मित्रता करने के लिए आप एक बार बाहर निकलकर मुझसे भेंट तो करें। आप भरोसा करें, मैं अत्यंत सदाशयी हूँ, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं वचन दे सकता हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं महाशय, मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं है, और आश्वस्त न होने पर दुर्बल व्यक्ति भी बलवानों के द्वारा मारा नहीं जा सकता।
2: नीत के विषय में हिरण्यक की बुद्धि धारदार है। मित्र हिरण्यक, विद्वानों का कहना है कि एक साथ सात कदम चलने से या सात वाक्य के प्रयोग से ही परस्पर मित्रता हो सकती है। इस नाते अब तुम मेरे मित्र हो चुके हो। यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो विवरण के भीतर से ही तुम मेरे साथ बातचीत, गुण दोष विवेचन और सुभाषित गोष्ठी करना।
1: लघु पटनक जी, आप बड़े चतुर एवं वाक पटु जान पड़ते हैं। आपसे मित्रता में एक शर्त पर कर सकता हूँ कि आप कभी भी मेरे विवरण के भीतर चरण नहीं रखेंगे।
2: भद्र

0: मैं आपके कथनानुसार ही रहूंगा।
1: उस दिन से दोनों मित्र आपस में सुभाषित गोष्ठियों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। लघुपतनक विभिन्न प्रकार के सामिश पकवानों को लाकर स्नेहपूर्वक हिरण्यक को दिया करता। हिरण्यक भी अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों को रात्रि में एकत्रित करके प्रातःकाल गोष्ठी में आए हुए लघुपतनक को देता था। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। एक दिन लघुपतनक ने आंखों में आंसू भरकर हिरण्यक से कहा,
0: भद्र हिरण्यक, इस क्षेत्र से मेरा मोह भंग हो गया है। मैं यहां से जाना चाहता हूं।
2: अरे प्रिय लघुपतनक, आपके इस मोह भंग का कारण क्या है?
0: यदि जानना चाहते हो तो सुनो। अनावृष्टि के कारण इस देश में अकाल पड़ गया है, जिस कारण लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। तो काक के निमित्त बलि भी कोई नहीं करता। ऊपर से पक्षियों को फंसाने के लिए जाल भी फैला रखे हैं। मैं किसी तरह से बच निकला हूं, अब मुझे विदेश जाना ही है।
2: ठीक कह रहे हो मित्र, तुम तो वैसे तुम जाओगे कहाँ?
0: दक्षिण के अरण्य में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र मंथरक नाम का कछुआ रहता है। मैं सोच रहा हूँ सुभाषित गोष्ठी के साथ अच्छे भोजन का आनंद भी लूं। यहाँ रहकर अपने साथियों का विनाश नहीं देख सकता।
2: ठीक है, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मित्र मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे भी यहाँ पर बहुत कष्ट है।
0: मैं तो आकाशगामी हूँ, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं?
2: मित्र, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो अपनी पीठ पर चढ़ाकर मुझे वहाँ पहुँचा दे, अन्यथा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
0: अरे वाह, ये तो बड़े हर्ष का विषय है मित्र। वहाँ पर हम तीनों सुख से समय व्यतीत कर पाएंगे।
1: काक की बात को सुनते ही हिरण्यक तत्काल उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच गया। एक वृक्ष की कोटर में हिरण्यक को बैठाने के बाद स्वयं भी एक शाखा पर बैठकर उसने मंथरक को आवाज लगाई।
0: मित्र मंथरक, मंथरक, अरे मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक हूँ। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ, आकर मुझसे तो मिलो।
3: अरे लघुपतनक, तुम? आओ मेरे गले से लग जाओ भाई, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। कहो, इतने दिनों बाद कैसे याद आया ये मित्र?
1: पारस्परिक आलिंगन के पश्चात प्रेम पुलकित होकर दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना अपना समाचार कहने सुनने लगे। अब हिरण्यक भी आकर उनके साथ बैठ गया।
4: अरे लघुपतनक, ये चूहा कौन है? तुम्हारा भक्ष्य होने पर भी तुम उसे पीठ पर चढ़ाकर क्यों लाए हो? कोई विशेष बात?
0: मित्र, ये हिरण्यक नाम का चूहा मेरा मित्र है।
4: अच्छा?
0: मेरे द्वितीय प्राण के समान प्रिय है मुझे।
4: ओ,
0: इनमें कई गुण हैं, अत्यंत सज्जन भी है।
4: अच्छा?
0: कुछ विशेष कारणों से विरक्त होकर तुम्हारे पास चले आए।
4: ओ,
0: और अपने स्थान का परित्याग कर दिया।
4: अच्छा, इनके वैराग्य का क्या कारण है भाई?
0: भद्र हिरण्यक, अब तो तुम यहाँ पहुँच गए हो, अब तुम अपने विरक्ति का कारण हम दोनों को बता दो।
2: सुनो, एक मठ में ताम्रचूर नाम का एक सन्यासी रहता था। वो भिक्षाटन से अपनी जीविका चलाया करता था। भोजन से बचे अन्न को भिक्षा पात्र में रखकर उसे खूंटी पर लटका दिया करता था। मुझे ज्ञात होने पर मैं अपने कुटुंबियों को लेकर प्रतिदिन भरपेट भोजन करने वहाँ पहुँच जाता था। एक बार सन्यासी से मिलने उनका मित्र बृहस्पति आया, परंतु सन्यासी को आतिथ्य के बजाय अपने अवशिष्ट भोजन की चिंता अधिक थी। इस कारण बृहस्पति क्रोधित हो गया। ताम्रचूर ने जब हम चूहों के उत्पात के कारण हो रही परेशानी के विषय में बताया, तो बृहस्पति ने मुझे मारने के कई तरीके अपनाए। मैं उससे दुखी हो गया। एक बार मैंने बृहस्पति के धन को चुराने का निश्चय किया, परंतु चोरी के समय वो सन्यासी जाग गया। सच कहते हैं मित्रों कि जो चीज हमारी है हमें अवश्य प्राप्त होगी।
1: मिलने वाली वस्तु मनुष्य को अवश्य मिलती है, विधाता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अतएव किसी वस्तु के विनष्ट होने पर मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए और किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी होगी वो तो मिलेगी ही। इसी संदर्भ में हिरण्यक ने वणिक पुत्र की कथा सुनाई।
2: किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वणिक रहता था। एक बार उसके बेटे ने एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में लिखा था, जो वस्तु जिसे मिलने वाली होती है अवश्य मिलती है। तब उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता।
5: ये बात तो अति उत्तम है। अब मैं ना तो किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर दुखी होऊंगा और ना ही अनायास मिल जाने पर आश्चर्य करूंगा, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो तो मुझे मिलेगी ही नहीं, और मेरे भाग्य में आने वाली वस्तु किसी दूसरे के पास जाएगी ही नहीं।
6: ये कौन सी पुस्तक है? इसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो।
5: देखिए पिताजी, इस श्लोक में कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता।
6: मूर्ख, लिखे हुए श्लोक पर इतना भरोसा? इस बुद्धि से तुम क्या कमाई करोगे? मेरे पुत्र होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर उद्यम नहीं करोगे तो फल कैसे प्राप्त हो सकेगा?
5: आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये श्लोक किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा रचा गया है, इसमें कुछ तो सत्य होगा ही।
6: निकल जा मेरे घर से, जा बाहर जाकर देख कि अपने भाग्य से तू क्या क्या अर्जित कर सकता है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा, निकल जा मेरे घर से, जा।
2: पिता की भर्त्सना से दुखी होकर वो वणिक पुत्र उस नगर को छोड़कर दूर चला गया। जो भी उससे उसका नाम पूछता वो कहता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को ही प्राप्त करता है। तो लोगों ने उसका नाम प्राप्त व्यर्थ रख दिया। एक बार उस नगर की राजकन्या चंद्रवती अपनी सहेली कादंबरी के साथ नगर निरीक्षण के लिए निकली।
7: सखी, मौसम कितना सुहाना है, आज विहार में आनंद आ गया।
8: हाँ, आज का ये दिन ही कुछ विशेष है। संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल है। धनी देखो, सामने से किसी राजपुत्र की सवारी आ रही है।
7: कहाँ? अरे हाँ सखी, वाह, अद्भुत सौंदर्य, क्या मनोहर रूप है। सखी, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवा दो ना सखी। अन्यथा कामदेव के वाणों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
8: धैर्य रखो सखी, धैर्य रखो, मैं अविलंब उस राजपुत्र से मिलकर तुम्हारे मन की बात बताती हूँ। राजकुमार की जय हो। युवराज, मैं अचिंत्य देश की राजकन्या चंद्रवती की सखी का

0: दिगंबरी हूँ। मैं राजकन्या की ओर से कुछ निवेदन करने आई हूँ।
1: कहो कादंबरी, क्या संदेश भेजा है राजकन्या ने?
0: युवराज, राजकन्या आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मुग्ध हैं। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं। आपको देखने से उद्दाम मनोभावों ने उनकी दशा अत्यंत चिंतनीय बना दी है। यदि आप शीघ्र उनके पास नहीं जाएंगे तो आत्मोत्सर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचेगा राजकन्या के पास।
1: ये तो मेरे लिए भी हर्ष का विषय है, परंतु कादंबरी, यदि राजकुमारी के पास पहुंचना अनिवार्य ही है तो बताओ किस उपाय से मैं महल के अंदर प्रवेश कर सकूंगा।
0: सुनिए कुमार, रात्रि के समय राजप्रासाद के नीचे लटकती हुई चमड़े की स्थूल रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ाइएगा।
1: ठीक है कादंबरी, यही उत्तम रहेगा। मैं सही समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम अब जाओ।
0: जो आज्ञा।
1: ये कादंबरी क्या सत्य कह रही थी? राजकुमारी के साथ ऐसा करना अनुचित है। मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा।
2: राजकुमार ने अपना निर्णय बदल लिया और इधर प्राप्त व्यर्थ घूमता हुआ उस राजमहल के समीप पहुंच गया। रात्रि में महल के झरोखे से लटकती हुई रस्सी को देखकर कौतूहलवश महल पर चढ़ गया। प्राप्त व्यर्थ को ही राजकुमार समझकर राजकन्या ने उसका सत्कार किया, फिर उसके साथ विविध मनोविनोद किया।
0: हे राजपुत्र, आपके दर्शन मात्र से ही आपके प्रति आसक्त होकर मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। आपको छोड़कर अब कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
3: मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु और हर स्थिति उसे मिल ही जाती है।
0: नहीं, नहीं, तो आप वो राजपुत्र नहीं है? कौन है आप?
3: हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी हर वस्तु से मिल ही जाती है।
0: दुष्ट, अभी मेरे महल से निकल जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलवाऊंगी। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से।
4: महल से निकलकर प्राप्त व्यर्थ नगर में भ्रमण कर ही रहा था, तभी वहां से एक बारात जा रही थी। प्राप्त व्यर्थ उस बारात में शामिल हो गया।
2: तो सुधीजन, आपने सुना कि प्राप्त व्यर्थ के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
6: राष्ट्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच जागरूकता भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस दौरान सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन गजेल का शुभारंभ किया। यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी

0: को लेकर 23 मई को इंदौर और उज्जैन में बैठकें होंगी। इसके लिए रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है, जिसमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईसर में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। भारतीय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25-26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालु 500 रुपए शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दिन 3 दिन तक प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
2: सभी श्रोता सखियों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज जब मैं आकाशवाणी आई तो सभी ने मेरे सनग्लासेस की बहुत तारीफ की। भाई, तारीफ क्यों ना करते, एकदम नए स्टाइलिश लग रहे थे। मेरी बेटी ने 3-4 दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन सेंड किए थे। उसे तो शॉपिंग का बहुत शौक है। शॉपिंग करना तो आपको और हमको सभी को भाता है। बहुत उत्सुकता रहती है कि आजकल मार्केट में क्या नया चल रहा है ये जाना जाए, जो चीज ट्रेंड में है उसे खरीदा जाए। इसके लिए हम मार्केट जाते हैं। यदि हमें कोई चीज ऑनलाइन अच्छी दिख जाती है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। इससे कई बार हमें मार्केट से कम दामों पर ही अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो जाता है। बहनों, ऑनलाइन शॉपिंग हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है, तभी तो काफी फायदेमंद प्रतीत होती है। बहनों, आप जब भी कोई चीज ऑनलाइन मंगवाएं तो उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर कर लें। वस्तु की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को लेकर संशय होना ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए सतर्कता जरूर बरतें। सखियों, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सदैव विश्वसनीय साइटों का ही प्रयोग करें और कोशिश करें COD मोड को अपनाने की, या फिर खरीदे गए सामान का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से करें, क्योंकि किसी गड़बड़ी की स्थिति में ये आपके पैसों को सुरक्षित करने का एक बेहतर विकल्प है। बहनों, जब हम किसी कीमती सामान को ऑनलाइन मंगाते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऑप्शन को जरूर चुनें। यानी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें वही उत्पाद मिले जिसका हमने भुगतान किया है। तो आगे से सखियों, ऑर्डर प्लेस करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। बहनों, जिस वेबसाइट पर आप भुगतान की जानकारी दर्ज करती हैं, चेक करें कि वो आपके लेन देन को सुरक्षित रखती है या नहीं। इसके लिए एक संकेत है URL के पहले HTTPS दिखना चाहिए। सखियों, भौतिक खरीदारी में चीजों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, स्पर्श करके महसूस करते हैं, वास्तविक रंग रूप और प्रक्रिया को समझ सकते हैं। बाजार जाकर घूम फिर कर मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। सखियों, मन चाही चीजों को बेशक खरीदिए, खूब शॉपिंग कीजिए आपकी अपनी जरूरतों के अनुसार, कभी भी ऑफर या सेल को देखकर नहीं। अरे अरे, सखी इन्हें तो सुनिए जरा, ये तो अपने लिए किसी और से ही

0: सखियों कार्यक्रम के प्रवाह को आगे ले जाते हुए आपको सुनवाते हैं कहानी बोनसाई की बगावत। कहानीकार है डॉक्टर चारू चित्रा।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहुआ रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने 2 दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई थी। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देती। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी।

उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था। यहां तक कि पापा, मम्मी, भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे थे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए थी जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही एमए की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज गलती से भी किसी तक पहुंच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भींचते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूं जो बिछती रहूं, मैं इंसान। वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी जिंदगी में, बोलो। शालिनी एक टक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कहती। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूंगी सबको, अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफेद मेजपोशों से सजी गोल मेजें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक की कव्वाली पर झूमते ढाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएं। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी, पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज कैसे प्रस्तुत करनी है ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजी और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगी। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। 2 सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी। तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक एनजीओ बना लेते हैं। राज बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने और मुझे लगता है मैं कर। अभी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया, नहीं यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास।

प्रदर्शित किया है। नीली पीली ओ चटकीली, पंखों की प्रिय पंखुड़ियां खोले। नीली पीली ओ चटकीली, पंखों की प्रिय पंखुड़ियां खोले। प्रिय तितली फूल सी हो फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल। तुम मधु की कुसुमित अप्सरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती। तुम मधु की कुसुमित अप्सरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती। शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, किस मधुर गीत लय में जाती। तितली रंग बिरंगी फूलों पर बैठती है और उन्हीं फूलों से मधुमक्खी रस चूसती है। जब मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों पर जाती है तो उसका रस अवशोषित करती है और अपने अथक प्रयासों के बाद इन्हीं फूलों के रस को बदल देती है मीठे मीठे रस में, यानी शहद में। बहनों, आज हम धन्यवाद करते हैं शहद की रानी यानी मधुमक्खियों का, जिनका प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे पॉलिनेशन भी करती हैं, यानी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। सखियों, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। प्रकृति में सभी का अपना विशेष महत्व है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, फूल पत्तियां या हम मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को जीवंतता दे रहे हैं। और पंत जी की रचनाएं सुनकर तो यूं लगता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे में समाहित होकर गुनगुना रहे हैं।

सखियों कलियों के खिलने से, भंवरों के गुंजन से और फूलों पर मधुमक्खियों के मंडराने से जन्म होता है मधुरस यानी शहद का। बोलते ही जुबान पर मिठास घुल गई ना। बहनों, शहद एक प्राकृतिक औषधि है, ये तो आप भी जानती हैं और हम भी। प्राचीन काल से ही घावों को भरने में शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, त्वचा को निखारता है। तभी तो हम और आप अपने फेस पैक में भी इसे मिलाते हैं। शहद त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, पाचन में सुधार करता है, साथ ही पुरानी खांसी के लिए तो ये रामवाण माना गया है। शहद का प्रयोग हम सभी करते हैं, पर बहनों, इसके ढेरों फायदे हमारे लिए तभी लाभकारी हैं जब इसका सही प्रकार से सेवन किया जाए। बहनों, फेस पैक हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, हमें स्मार्ट बनाता है। गर्भवती महिलाओं को शहद का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए। यदि हम लगातार ज्यादा मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो हमारा वजन बढ़ सकता है, तो ख्याल रखिए, क्योंकि शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो होता ही है, जो शक्कर का प्राकृतिक रूप है। सखियों, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि शहद का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर ये एक भ्रांति है। रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि यदि हम लगभग 2 बड़े चम्मच शहद का सेवन नियमित रूप से 8 सप्ताह तक करते हैं तो इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। शहद का सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। वे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात में गुनगुने दूध के साथ शहद का सेवन करते हैं तो कुछ लोग सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू के रस के साथ शहद लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी पिघलने लगती है और हम हो जाते हैं स्लिम ट्रिम यानी स्मार्ट वुमेन। तो सखियों, आप भी स्मार्ट बनिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्त, तो अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, एक सूचना है आपके लिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा ये जानकारी हम आपको दे दें। भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनीतिक दल, समिति, प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं, जिससे पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाती है, ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके, इसलिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है, ताकि उससे सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसलिए भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा

कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्तेजात्मक भाषण दिए जाएंगे जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुपत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना या करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनीतिक दल, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक परिसर पर किसी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले पर संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ कर रहे हैं इस चौकड़िया के साथ, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: शिव राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चयन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल,

0: हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
2: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सागर फिल्म का ये गीत है। एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने गीत लिखा, धुन बनाई आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म जबरदस्त के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने उनका स्वागत किया। इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना की भी समीक्षा होगी। इस दौरे में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। इससे जरूरी फेरबदल आसान होंगे। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया
1: कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे और बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में AI आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। सिंहस्थ 2028 के लिए स्मार्ट भीड़ प्रबंधन और AI पुलिसिंग के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया और सिंगापुर से आए वैश्विक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस ग्राउंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन किया जाएगा और जरूरतमंदों को हितलाभ भी बांटे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत आज पहली बार शहडोल पहुंच रहे हैं। वे ट्रेन से कटनी आएंगे और फिर सड़क मार्ग से शहडोल पहुंचेंगे। 3 दिन के इस प्रवास में उनका मुख्य कार्यक्रम पांडव नगर के सरस्वती स्कूल में होगा, जहां 300 से ज्यादा शिक्षार्थियों को के साथ बौद्धिक शिविर आयोजित है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है और ना ही कोई जवाबदेही। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ा है जो रोजाना के दवाओं के लिए पूरी तरह रिटेल दुकानों पर निर्भर हैं। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधि क्रिस्टल IT पार्क और पीतमपुर की सिप्ला कंपनी का दौरा भी करेंगे। प्रदेश में गर्मी ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 22 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा और ग्वालियर में भी पहली बार 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की इटारसी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में निश्चय पोषण योजना के तहत 12 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित की गई। नीमच में कल 21 मई शासकीय ITI मनासा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर में भव्य गीता भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
3: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
5: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में

0: 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। इसमें श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं हम कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा की। अनिल कामले, नेहा फणसे, सीमा सबीहा, सुषमा, स्लीमा, पूजा, गुमास्ता नगर इंदौर से अपनी पसंद हमें भेजते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की ये पसंद है। गिरफ्तार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार आशा भोसले का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत लिखा है, बप्पी लहरी की धुन है।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर से किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ फिल्म अलग का ये गीत सुनना चाहते हैं। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजीम गुड़िया और मोहम्मद अब्दुल बाबा अनजाना। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से दिलीप कुमार, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। ग्राम बगवड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका, प्रोनोका और उत्कर्ष नेताम की। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की पसंद पर फिल्म अलग अलग का ये गीत किशोर कुमार ने गाया है। आनंद बख्शी का गीत लिखा, आरडी बर्मन की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां की, लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, मेंढकी रोड से रागु सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत की, और राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन की, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की। गुलामी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, लता मंगेशकर का गाया हुआ। धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

कोटवा नारायणपुर से अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिहा नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, अश्विनी रोशनी राय और प्रांजल राय की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, राजू बाई, रोजू बाई तड़वी, परू, मुबारक पारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारिकर।

लेकर की। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुनना पसंद किया है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, भूपिंदर और आशा भोसले का गाया फिल्म एतबार से ये गीत है।

0: फिल्म एतबार का ये गीत था, आशा भोसले और भूपिंदर ने इसे गाया था, हसन कमाल का लिखा और बप्पी लहरी की धुन थी। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने उनका स्वागत किया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस मैदान में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है ना कोई जवाबदेही। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित करेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। आज रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्या ऐसा होगा, ये नाटक प्रसारित करेंगे रात्रि 10:00। लेखिका श्रीमती मधु राजन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित एमएस गोपाल कृष्ण का वायलिन पर बजाया राग भोपाली। आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी संध्याकालीन प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय 2:02 होने को है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम पुनः हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।

शहर वही रहते हैं, फर्क बस लोगों से पड़ता है। कहीं राहें आसान हो जाती हैं तो कहीं सफर मुश्किल बनता है। ये सब बड़े नियमों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से तय होता है। जब हम बिना कहे सही करना चुन लें तो हर जगह थोड़ी बेहतर लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललिता शर्मा और आप सुन रहे हैं युववाणी। आज सुबह की ही बात है, मैं घर से निकली, थोड़ी जल्दी में थी लेकिन मन हल्का खुश था। ऐसा लगा कि आज का दिन अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, मेरी नज़र सामने पड़े कचरे पर गई। किसी ने रात में ही उसे सड़क पर डाल दिया था और अब वो उधर उधर फैल रहा था। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गई और सोचने लगी कि ये सब इतना कॉमन कैसे हो गया कि अब हमें ये गलत भी नहीं लगता। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक स्कूल बस खड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे उतर रहे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ अपना बैग संभालते हुए। लेकिन पीछे से गाड़ियां लगातार हॉर्न बजा रही थी, जैसे 2 मिनट रुकना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो। उस मोमेंट में मुझे अजीब सा लगा कि हम सबको जल्दी तो है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस जल्दी में हम क्या खो रहे हैं। फिर मैं ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची। सिग्नल पर रेड लाइट थी, मैंने गाड़ी रोकी। फिर मेरे साथ 2-3 लोग और रुके थे लेकिन बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जैसे नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए हों, सबके लिए नहीं। उस समय मन में एक सवाल आया कि क्या ये सच में इतनी छोटी बात है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर दें, या ये वही चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को आसान या मुश्किल बनाती हैं। हम अक्सर बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमें लगता है कि समाज बदलने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन सच तो ये है कि बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। वही आदतें जो हमें बिना सोचे करते हैं, वही आदतें जो हमें लगती हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी, शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी, कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बहुत शांत था लेकिन अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में किसी ने चिप्स का पैकेट खाकर वहीं छोड़ दिया, फिर किसी और ने भी वैसा ही किया। धीरे धीरे वही जगह गंदी लगने लगी। उस पल मुझे समझ आया कि गंदगी एक बार में नहीं फैलती, वो धीरे धीरे हमारी आदतों से

हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा फर्क रोक देती है। क्योंकि अगर हर कोई यही सोचेगा तो कोई शुरुआत ही नहीं करेगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी सोच बदल ले तो धीरे धीरे पूरा माहौल बदल सकता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति बस इतना ध्यान रखे कि वो कचरा सही जगह डाले, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, पब्लिक प्लेसेस पर शांति बनाए रखें और दूसरों

का ध्यान रखें तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास भी लोग हैं और हमारी हर छोटी आदत किसी ना किसी को प्रभावित करती है। अब जरा एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या हम हमेशा सही करते हैं? शायद नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है, हम परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन हम बेहतर बन सकते हैं और वही सबसे ज़रूरी है। अगर हम हर दिन बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, अपने छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान देने लगें, तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो हमें अलग से कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, सही करना अपने आप होने लगेगा। हम जिस जगह रहते हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम उसे अपना मान लेते हैं तो हम खुद ही उसका ख्याल रखने लगते हैं। फिर हमें कोई नियम याद नहीं दिलाना पड़ता और कोई रोकना भी नहीं पड़ता। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? शायद यही छोटा सा सवाल एक बड़ा बदलाव

दोस्तों, आज के समय में एक और चीज़ है जो हमारी आदतें और हमारे व्यवहार और धीरे धीरे हमारी पूरी सोशल लाइफ को बदल रही है, और वो है मोबाइल फ़ोन। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल बुरी चीज़ है, सच कहूँ तो शायद आज इसके बिना ज़िंदगी इमेजिन करना भी मुश्किल है। सुबह अलार्म से लेकर रात की आखिरी नोटिफिकेशन तक हमारी दिनचर्या कहीं ना कहीं मोबाइल के आसपास घूमती है। हम उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। लेकिन कभी कभी यही मोबाइल हमें उन लोगों से दूर भी कर देता है जो हमारे सबसे पास होते हैं। कभी नोटिस किया है कि एक ही घर में चार लोग बैठे हैं लेकिन कमरे में साइलेंस होता है, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है। कोई रील्स देख रहा होता है, कोई चैट्स में बिजी होता है, कोई गेम्स खेल रहा होता है और धीरे धीरे बातचीत कम होने लगती है। पहले शाम को लोग छत पर बैठते थे, पड़ोसियों से बातें करते थे, बच्चे बाहर खेलते थे और परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे। अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन तो हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हैं। कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ एक फैमिली बैठी थी, माँ पापा और दो बच्चे। सबके सामने खाना था लेकिन किसी के बीच बातचीत नहीं थी। माँ फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, पापा कॉल्स में बिजी थे और बच्चे गेम्स खेल रहे थे। उस पूरे टेबल पर बस फोन्स एक्टिव थे, लोग नहीं। तब मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करने आई थी, लेकिन कई बार हम उसी की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे मोबाइल हमारे सोशल बिहेवियर को बदलने लगता है। आज कई लोग सामने बैठकर बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं लेकिन घंटों टेक्स्टिंग कर सकते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि स्क्रीन के पीछे इमोशंस फील नहीं करने पड़ते। लेकिन असली ज़िंदगी में लोगों की आंखें पढ़नी होती हैं, उनकी फीलिंग्स समझनी पड़ती हैं और उनके साइलेंस को भी सुनना पड़ता है। यही असली सोशल बिहेवियर होता है। अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा हो और हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहें तो उसे लगता है कि उसकी बात इम्पोर्टेंट ही नहीं है। यही छोटी आदतें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करने लगती हैं। बच्चों पर भी असर साफ दिखाई देता है। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, गिरते थे, उठते थे, दोस्तों से लड़ते थे और फिर मान भी जाते थे। उन्हें रियल इमोशंस और रिलेशनशिप नेचुरली समझ आते थे। लेकिन अब कई बच्चे घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं। मोबाइल गेम्स और वीडियोस ने आउटडोर गेम्स की जगह ले ली है। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, सोशल इंटरेक्शन भी कम होने लगता है। धीरे धीरे पेशेंस कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है और रियल कन्वर्जेशंस ऑकवर्ड लगने लगती है। कई इमोशंस अब सिर्फ इमोजीज तक सीमित रह गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई वीडियो कॉल उस एहसास को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती जो किसी अपने के पास बैठने में

होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें मोबाइल फोन छोड़ देने चाहिए। टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बैलेंस खत्म हो जाता है। अगर मोबाइल को ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर वही हमारी पूरी दुनिया बन जाए तो कहीं ना कहीं हम असली दुनिया से दूर होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी फ़ोन को साइड में रखकर अपने आसपास के लोगों को समय दिया जाए, फैमिली के साथ बैठकर बिना नोटिफिकेशंस की बातें की जाएं, दोस्तों से सिर्फ फ़ोटोज़ लेने के लिए नहीं बल्कि मोमेंट्स फील करने के लिए मिला जाए, और किसी से बात करते समय उसे पूरा अटेंशन दिया जाए, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स से नहीं अटेंशन से भी दिखती है।

शायद आज के समय में किसी को अपना समय देना सबसे बड़ी वैल्यू बन चुका है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आखिर में यादें फोन्स में सेव नहीं होती, वो दिल में बन

होती हैं, और असली कनेक्शन वही होता है जहाँ नेटवर्क नहीं लोग जुड़े होते हैं। दोस्तों, आज की इस बातचीत में बस इतना ही। कभी सड़कों की भागदौड़ में तो कभी मोबाइल के स्क्रीन्स के पीछे हम धीरे धीरे उन छोटी बातों को भूलते जा रहे हैं जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती हैं। लेकिन शायद जिंदगी अब भी वही खूबसूरत लगती है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो अगली बार जब आपके हाथ में फोन हो या आप किसी भीड़ का हिस्सा हो, बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ कनेक्टेड हूँ या सच में किसी से जुड़े भी हैं? क्योंकि आखिर में यादें स्क्रीन्स में नहीं, दिलों में बसती हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त ललिता शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा।

0: लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
5: डीडी डायरेक्ट,
4: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
5: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
4: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
5: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
4: आज ही करें कनेक्ट
5: दूरदर्शन की DTS सेवा डीडी डायरेक्ट।
6: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किस

ज्ञानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं

आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये प्यारा सा गीत। अन्वेषा, विनीत सिंह और साथियों की आवाज़ में इरशाद कामिल की बोल थे और हिमेश रेशमिया का

आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है फिल्म ओम शांति ओम का ये नगमा। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मिथुन के गीत संगीत से सजा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है कबीर सिंह।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुल्तान फिल्म का गीत पापॉन की आवाज में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत विशाल शेख।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
1: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
2: कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

Arrotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। श्री मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने में इटली की भूमिका की तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फिल्म्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन की मांग कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार

0: स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talk with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 6:11:15। आप हैं इस वक्त सदाबहार गीत में रूपा धवन के साथ, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं पहला खूबसूरत सा सदाबहार नगमा गूंज उठी शहनाई फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज़ में।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्ज

0: जियो मिलोनि इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुम् आसीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वं आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरं उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जियोर्जिया मिलोनी इत्युभाभ्यां लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्याधारः स्वातन्त्र्यस्य, लोकतन्त्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्तदृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहितास्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धेः, सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य, ऊर्जापरिवर्तनस्य, प्रबन्धस्य, सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्, यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित V3 प्रक्षेपास्त्रस्य अन्तिम विकासपरीक्षणानां सफलतया सम्पादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे DRDO परीक्षण परिधि मध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः डीआरडीओ संस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलम्बनार्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानम् इति वर्णितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य सियोल नगरे दक्षिण कोरिया देशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मन्त्रिणा ली योंग चुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीसिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्त विकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्त निर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागी प्रयासानां उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषण व्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षि काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामि जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतमायाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नत वर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांशसंग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरीवर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्रीगडकरीवर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्य भारते तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थितेः संभावना प्रकटिता अस्ति। आईएमडी इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडावार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे हैं दुश्मन फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत उत्तम सिंह का।

आइए अब सुनते हैं राहत इंदौरी के लिखा गीत फिल्म करीब से। संगीत दिया है अनु मलिक ने और खूबसूरत आवाजें कुमार सानू और संजीवनी की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाज़ में खूबसूरत कव्वाली। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
3: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली

जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारे आज की संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय रहेगा खरीफ फसल की बुवाई पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। क्या ऐसा होगा, ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे। लेखिका होंगी श्रीमती मधुराजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढांडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा पंडित M.S. गोपाल कृष्ण का वायलिन वादन, राग होगा भोपाली। और अब बारी है हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा 8:30 पर। 9:02 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राधा कुलकर्णी की आवाज में चंद गजलें। कमर जमाली का लिखा नाटक खुशबू का नगमा आप सुनेगा 9:30 पर। प्रस्तुत करता होंगे जितेंद्र स्वरूप राजन। 10:00 का समय होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का गीत सागर। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते

करते हैं 10:05 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में दिन में 11 बजे हम प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन में 12 बजे 2:30 पर और रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक पंचतंत्र का 8वां भाग। दिन में 1 बजे होगा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम 1:30 पर लोक संगीत 1:45 पर सुनेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 2 बजे शाम 5:33 पर 6:30 पर रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसमें बहनें सुनेंगी भेंटवार्ता पोषण का खजाना मिलेट्स या श्रेयन जानकारी देंगी अरुणा सोमकुमार। ये कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति होगा।

रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित उल्हास कवसालकर का ख्याल गायन। राग होगा यमन कल्याण।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के बीच शिखर वार्ता। प्रदेश कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी। तबादला नीति 2026 भी पास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैतूल के भीमपुर में लॉन्च की अत्याधुनिक गजेल मशीन। 10 मिनट में होगी सिकल सेल की जांच। और कुछ ही देर में ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने और रक्षा साजो सामान के सह उत्पादन पर भी काम करेंगे। जहाजरानी, बंदरगाह आधुनिकीकरण और समुद्री अर्थव्यवस्था में भी मिलकर काम करने का फैसला हुआ है।
1: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया,
2: आज करीब करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्ध जनों के कल्याणी, महिलाओं, दिव्यांग जनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टिमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मातृत्व, पितृत्व और ऐच्छिक अवकाश देने के साथ सेवा की आयु सीमा 62 साल करने और निर्दोष साबित होने पर नौकरी वापस देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने का भी ऐलान किया।
3: हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई 62 साल। ऐसे में माता बहने भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम में अत्याधुनिक जांच मशीन गजेल का शुभारंभ किया। ये मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में लगाई जाएगी, जहां सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच महज 10 मिनट में हो सकेगी। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस मामले में परिवार की पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ फरार पति समर्थ के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत आज कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच शहडोल पहुंचे। वे 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। यहां सरस्वती स्कूल में 18 मई से 8 जून तक चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में 4 प्रांतों के 383 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस वर्ग में बौद्धिक सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। डॉ. भागवत अपने प्रवास के दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे विषयों पर स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया। बैठक में ऑनलाइन गुमनाम समूहों के जरिए परीक्षा से जुड़ी फर्जी सूचनाएं फैलाने पर गहरी चिंता जताई गई। गुजरात के कच्छ जिले को राजस्थान और दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा इस शुक्रवार से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रदेश में आज हजारों दवा दुकानें बंद रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। हड़ताल को प्रदेश के ज्यादातर रिटेल और थोक दवा व्यवसायियों ने समर्थन दिया। भोपाल में केमिस्टों ने ऑनलाइन सिस्टम का पुतला भी दहन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है, जो सीधे आम लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने आज खंडवा के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए की लागत से बने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। सीहोर जिले के बुधनी के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खास जगह बना रहे हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को यहां के कारीगरों द्वारा बनाए गए 500 चरखे भेंट किए गए थे। वहीं दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला बाजार में भी इन्हें खूब सराहा जा चुका है। बुधनी में 29 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है। यहाँ 51 शेड में कारीगर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2027 की जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिछले वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। आईपीएल का 65वां मैच अब से कुछ देर बाद ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ के दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना होगा। वे 12 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं। मुंबई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और 8 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य प्रगति पर है। गुना में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बीनागंज स्थित फैंसी पटाखा दुकान और गोडाउन का औचक निरीक्षण किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। जबलपुर में भारतीय रेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों में 15 मई से 15 जून तक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी और गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान और सेमिनार का आयोजन किया गया। शिवपुरी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम में बैठे और सुनन बारे अपने सभी भैया बहन का जी शिल्पा बहन की राम राम। और सुनो भैया, आप सभी कैसे हो? देखो भैया, इस समय हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है बहुत तेज़ पड़ रही है। सुबह से ही तेज़ धूप जो है वह हम सबको परेशान कर रही है। तो देखो भैया, गर्मी तो है ही, लेकिन ऐसे मौसम में हम सभी को बहुत अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है और बहुत सावधानी भी बरतने हैं। भैया कोशिश यही करें कि सुबह के समय तो जल्दी से जल्दी अपने काम जो है वह निपटा लें, दोपहर के समय बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि भैया बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और ऐसे में लू लगन को भी खतरा जो है वह बनो रहते हैं। इसलिए देखो, काम तो करने ही है, तो अपने कोशिश करें कि जल्दी काम कर लें, साथ ही अगर ज़रूरी है जाने ही पड़े तो खाली पेट बिल्कुल भी नहीं घर से बाहर निकलें, थोड़ा बहुत कुछ खा करके ही घर से नाश्ता पानी करके ही निकलें। और साथ ही भैया देखो, पानी खूब पिएं और साफ और स्वच्छ पानी पिएं और नींबू को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आजकल देखो बाज़ार में मौसमी जो अपने फल आ रहे हैं उनको भी इस्तेमाल करें, जिसमें अपने देखो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज है ना, ये खूब खाएं, क्योंकि ये देखो अपने शरीर में पानी की जो कमी हो जाती है उनकी पूर्ति जो है वह भरपूर करते हैं। साथ ही भैया ग्लूकोज भी थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहें। इस तरीके से भैया देखो अपने शरीर में पानी की कमी जो है बिल्कुल भी नहीं होने दें, क्योंकि भैया पानी की कमी इस मौसम में अगर हो जाते तो बहुत मुश्किल होते। इसलिए पानी की कमी पूर्ति जो है वह अपने शरीर में बनाए रखें। साथ ही हल्को और सुपाच्य खाना खाएं, गरिष्ठ खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं और समय पर खाएं। यदि ज़रा सा भी ऐसा लगे कि हमारा पेट भरो है और खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही है, तो कोशिश करें कि ना खाएं, अपने हल्को ही खाना करके ही रह जाएं। संगे इस मौसम में भैया दही, छाछ, इसको इस्तेमाल अपने खाना में ज़रूर करें। दही को इस्तेमाल तो सुबह के समय ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें और छाछ भी अपने ले सकते हैं। छाछ भैया एक तो शरीर को ठंडक देते हैं, पानी की पूर्ति करते हैं और अपने खाना हजम करने में उसमें भी मदद करते हैं। तो भैया यदि हम इन सब छोटी छोटी बातों को अपने इस मौसम में ध्यान रखेंगे तो हम अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे और स्वयं भी स्वस्थ रह पाएंगे। और अब भैया बात करते हैं कुछ अपे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। ये योजना भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू करी गई। ये योजना को देश ग्रामीण इलाके में बिना सड़क वाली बस्तियों को हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ने हैं। मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में पक्की सड़क से जोड़ना है। भैया सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 3 स्तरीय निगरानी प्रणाली है। निर्माण के बाद पहले 5 साल तक उसको रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होते हैं। भैया ये योजना को देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच से सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण ये कड़ी है। भैया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभा रही है। तो भैया इस बात को देते हैं हम इस चर्चा को यहीं पर विराम और बात करते हैं भैया पशुधन की। इसमें भैया गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि आउते हैं। ये सभी हमारी कृषि में सहायक हैं और इसलिए इनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। एक तो भैया इस मौसम में देखो अपने पशुओं को भी गर्मी से बचाएं, उन्हें खुले स्थानों पर नहीं बांधें, उन्हें साफ और स्वच्छ खाना दें और साथ ही शेड वाले स्थान पर बांधें, उनको खान पान के भी बहुत ध्यान रखें। पशुधन की रक्षा करना ना केवल भैया आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पशुधन भारतीय कृषि को एक मेरुदंड है जो सीमांत और छोटे किसानों की आय में 16% तक अधिक उपयोग में योगदान देते हैं। पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए भैया उनको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है।
पशुओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोटू और एस्ट्रोजन जैसी बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर उनको टीके ज़रूर लगवाएं और उनकी समय समय पर पशु चिकित्सक से नियमित जांच कराएं। विशेष रूप से बरसात से पहले अपने को ये काम ज़रूर करने हैं। साथ ही यदि कोई पशु बीमार हो भी जाए तो उसे तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं फैले। और पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा और मिनरल मिक्सर, खनिज लवण को संतुलित मिश्रण ज़रूर दें। और भैया पशुओं को इस मौसम में भी देखो साफ़ और स्वच्छ पानी ही उपलब्ध कराएं, बासो पानी नहीं पिलाएं, गर्म पानी नहीं पिलाएं, उनको ताजो पानी ही दें जो हल्को ठंडा हो, गर्म पानी बिल्कुल नहीं दें क्योंकि देर तक पानी अगर रखो रहते तो समय जो तापमान अपने देख रहे हैं पड़ रहा है तो वो पानी गर्म हो जाते, तो ऐसो बिल्कुल नहीं करें। उनको थोड़ी थोड़ी देर में उनको ताजो पानी ही उनके जो उनका बर्तन है उसमें उस भरत रहें। साथ ही भैया जहाँ पर भी पशु हो वहाँ पर पौधे यदि हों तो उनके नीचे ही उनको संजा सवेरे के समय उन्हें बांधें, खुले में उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। नियमित रूप से गोबर साफ करें और चूनों को छिड़काव करें। तो भैया इस तरीके से हम अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। पशुओं के साथ साथ जो भी अपने जो पालतू पशु हैं उनको अपने को ध्यान ज़रूर रखने हैं। तो भैया इस बात के संगे हम इस चर्चा को देते हैं यहीं पर विराम। कैसे भैया हम सोच रहे हैं कि आपके लाने कछु मनोरंजन कर दें, तो भैया चलो सुन लेते हैं सबसे पहले अपने राम सिंह राय को गाओ ये प्यार और सो लोकगीत। चलो सुनते हैं ये लोकगीत।

भैया अभी अपन सुन रहे थे राम सिंह राय को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत। और भैया देखो अपन कुछ बात करें खेती की, तो कोई इस समय देखो भैया अपन देख रहे हैं कि ड्रोन जो है, ड्रोन तकनीक, ये हमारे खेतन के लाने बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। भैया इससे क्या है कि एक तो अपने कम समय में बहुत सारो काम जो है इस ड्रोन के सहायता से हो जाते हैं, और जो सटीकता, समाज की बचत और कम लागत में ये सभी सब फसल प्रबंधन, ये सभी काम जो है इस ड्रोन की मदद से हो जाते हैं। ड्रोन भैया 15 से 20 मिनट में ही लगभग 1 एकड़ में उर्वरक, कीटनाशकों को छिड़काव आदि कर सकते हैं, जिससे पानी की 90% तक और दवाओं की 40% तक बचत होते हैं। ये भैया साथ ही अपने फसल पे निगरानी, मैपिंग और मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण में भी अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये ड्रोन्स जो है वह निभा रहे हैं। भैया ड्रोन से कीटनाशकों, अपने जो अपने रसायन होते हैं और तरल उर्वरकों को समान और लक्षित छिड़काव जो है वह होते हैं, जिससे रसायनों की बर्बादी कम होते हैं और लागत में भी 40% तक कमी आते हैं। साथ ही भैया ड्रोन से मिनटों में काम होने से मानव श्रम और समय की भी बहुत बचत होते हैं। तो भैया आज हमारे जो खेती किसानी को काम है ये ड्रोन सिस्टम की मदद से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बस जो इसमें थोड़ी सी जो ड्रोन जो सिस्टम होते हैं इन्हें खरीदने में जो लागत आते हैं वही एक लागत जो है वह अपने को थोड़ी हो जाते हैं, लेकिन काम जो है वह बहुत आसान हो जाते हैं। और जो नपे जो पूरे खेत की जो निगरानी है, जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, पूरे खेत की देखभाल

0: घूम फिर कर बहुत समय में कर पाते हैं, ड्रोन की सहायता से बहुत कम समय में कर लेते हैं। संगे कीट कहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ पर कोई परेशानी आ रही है अपने खेती में, ये सब कार्रवाई जो है भैया अपने ड्रोन के सिस्टम के आसानी से हो जाते हैं। तो इस बात को संगे हम इस चर्चा को देते यहीं पर विराम। कैसे भैया हम आपके लाने एक भेंट वार्ता लेके आए हैं जिसको विषय है खरीफ पूर्व बीजों का शोधन एवं जांच, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया समर्थ अग्रवाल। तो चलो सुन लेते हैं पुनः प्रसारित ये भेंट वार्ता।
1: किसान श्रोताओं नमस्ते। मौसम इस समय जो चल रहा है, या यूं कहें कि इस समय जो ऋतु चल रही है, इस समय जायद की बात की जाती है, लेकिन एक अच्छा किसान वही होता है जो भविष्य की तैयारियों को देखते हुए अपने कृषि कार्यों को करे। अगर इस समय हम खरीफ की बात करेंगे तो एकदम लगेगा कि ये समीचीन नहीं है, लेकिन जो मैंने पहली लाइन कही कि अच्छा किसान वही है जो दूर निगाहें रखे, दूर दृष्टि अगर वो आज अपनाएगा तो भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स पाएगा। तो आज इसी तरह का एक विषय है, वो है खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं। सर नमस्ते, सभी सुनने वालों के मध्य में
2: नमस्कार साहब, और सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार।
1: जैसा कि सर मैंने विषय कहा कि खरीफ पूर्व बीजों का शोधन एवं जांच, इस समय क्यों जरूरी है? पहले तो ये
2: बीज का शोधन मैं दो भाग में समझता हूँ। एक भाग तो ये कि बीज का शुद्धिकरण करना या बीज की सफाई करना, और दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है बीजों का उपचार। तो बीज शोधन का मतलब हमारा इस समय किसान भाइयों से ये है कि अभी खरीफ में और अभी में लगभग उनको एक डेढ़ महीने का गैप मिल रहा है, तो इस बीच में अपने जागरूक किसान हैं उन लोगों को देख लेना चाहिए, उनके पास जो पिछले वर्ष का बीज रखा हुआ है खुद का, या कहीं से बाहर से लाते हैं तो बाहर से लाते हैं बीज, हो सकता है प्रमाणित बीज लाएं, आधार बीज लाएं, अच्छा क्वालिटी गुणवत्ता वाला बीज लाएं। लेकिन कई बार किसान स्वयं का भी बीज उपयोग करते हैं, और ज्यादातर किसान यही है, कम से कम 70-90% तक किसान अपना स्वयं का बीज उपयोग करते हैं।
1: महंगा भी है और हाँ। खुद के बीज पे ये है कि वो भरोसा है, क्योंकि हमने पिछली बार प्रोडक्शन के लिया था,
2: जो खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर अपना स्वयं घर का रखा हुआ अनाज ही बीज के रूप में उपयोग करते हैं तो उसको उपयोग करने के पूर्व आवश्यक जो उसमें शोधन है वो करना चाहिए। पहला तो बीज का शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण ऐसा कि जैसे किसान जो होता है वो बीज का उत्पादन तो करता नहीं है, वो अनाज का उत्पादन करता है, और अनाज को मार्केट में या स्वयं के उपयोग में लाने के बाद जो है ना कुछ हिस्सा उसका बचाकर बीज के लिए रखता है। कई किसान भाई ये मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि वो रखा हुआ अनाज को सीधे बोनी कर देते हैं जब बोनी का समय आता है तो। लेकिन मैं कहता हूं कि उस अनाज को भी बीज के रूप में कुछ संशोधित कर लें किसान भाई, तो वो काफी जो है ना नुकसान से भी बच जाएंगे और जो बीज का लाभ होता है वो लाभ भी उनको मिलेगा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई जो बीज जिसको बनाना चाह रहे हैं तो उसको सबसे पहले साफ सफाई कर लें, छनाई कर लें, और उसको जो है ना अगर रोग और कीड़ों से अगर उसमें प्रकोप है तो उससे मुक्त कर लें, उसके लिए सही समय पे सुखा लेना चाहिए, और उसको छन्नी लगा करके ग्रेडिंग करके उसको बीज को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे जो अनाज होता है, अनाज में बीज के अलावा कई चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ छोटे आकार के दाने होते हैं जिनको अंडर साइज बोलते हैं वो भी रहते हैं, कुछ दाने थ्रेसिंग के टाइम में डैमेज हो जाते हैं, टूटे फूटे दाने रहते हैं वो भी रहते हैं, कुछ फसलों के अवशेष भी उसमें मिक्स हो सकते हैं, कुछ मट्टी भी आ सकती है, तो ये सब चीजें उसमें मिले रहते हैं अनाज में। तो इनको अगर किसान भाई छनाई कर लें, पहले साफ सुथरा कर लें, तो एक शुद्ध जो है ना उनको जो बीज के लायक दाने हैं उनको अलग किया जा सकता है, तो वो कर लें। तो एक जो अनावश्यक जो दाने या अनावश्यक चीजें बीज के साथ जो फेंक दिए जाते हैं, अंडर साइज दाने भी फेंक दिए जाते हैं, तो वो बच जाएंगे, और दूसरा अच्छा बीज जाएगा गुणवत्ता वाला, तो पौधे भी जो उससे निकलेंगे उगेंगे वो अच्छे गुणवत्ता के पौधे भी अच्छे क्वालिटी के निकलेंगे, तो उनसे निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो एक तो ये हो गई कि साफ सफाई। अब जितने कोई भी फसल की बात करो, आप चाहे सोयाबीन की बात कर लो, धान की बात कर लो, या मूंग उड़द की बात कर लो, जो भी किसान भाई खेती करते हैं, जो भी फसल लेते हैं, तो उन सब में एक जैसा ही है कि सबका जो है ना बीजों का सही शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है।
1: प्रोसेस सबके लिए एक है,
2: प्रोसेस सबके लिए एक है, उसमें छन्नी लगाना पड़ेगा, उनका अंडर साइज जो कचरा अलग करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा उसमें धूल धक्कड़ है ऐसी चीजें मिली है तो उसमें हवा से पंखा लगा के उसको भी हटाया जा सकता है, अलग किया जा सकता है,
1: धोया जा सकता है,
2: वो एक अलग उपचार हो गया। कुछ दाने हैं जिनको धोया भी जा सकता है, जैसे धान का होता है।

0: हैं या बीज जब निकलने के बाद पौधा उस पे अटैक करते हैं तो उसके लिए भी उपचारित किया जाता है।
1: उसके लिए कोई दवा?
0: उसके लिए बिल्कुल दवा है। तो जैसे जब बोनी करने जा रहे हो, अभी आप धान का नाम लिए थे
1: जी,
0: तो धान में एक उपचार होता है उसको सलाइन वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं या नमक का पानी, नमक का घोल उपचार कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जिस बीज को हमको धान का जो हम अनाज के रूप में जो धान है उसको अगर बीज में परिवर्तित करना है तो उसका जो उपचार है इस तरह से करें कि 10% नमक का पानी बनाए। उसके लिए क्या करना है, 10 लीटर पानी और 1 किलो नमक ले, उसमें जो है ना बीज को डुबाएं। तो उसमें कई बार क्या होते हैं, पोचे दाने हैं, धान के पोचे दाने होते हैं जिसके अंदर ऊपर से छिलका रहता है लेकिन अंदर दाना या बीज नहीं होता उसके अंदर,
1: अंदर मटेरियल
0: ऐसा भी होता है। कुछ दाने बीमारी ग्रसित दाने होते हैं, जैसे उसमें एक बीमारी आती है लाई बोलते हैं देसी भाषा में बोलते हैं, वो दाने जो है ना उसमें एक फाल्स स्मट होता है, जैसे लूज स्मट गेहूं में आता है उसी टाइप का एक फाल्स स्मट बीमारी धान में भी आती है जिसमें दाने बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर का जो चावल होता है वो फफूंदियों के द्वारा जो है ना राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो फट जाता है, मोटे हो जाते हैं और वो दाना जो है ना हल्का हो जाता है। तो ऐसे दानों में जिन भी इन्फेक्शन हुआ है वो दाने भले मोटे ना हुए हों कई बार या फटे ना हो लेकिन देखने में ठीक ठाक लगे, लेकिन अगर इन्फेक्टेड दाने हैं तो उनका वजन कम हो जाता है, बहुत हल्के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सब जो अनावश्यक चीजें हैं तो अगर हम नमक पानी में उनको डालते हैं तो वो सब हल्के होने के कारण तैरते हैं, उनको जो है ना अलग कर लिया जाता है, उनसे छान लिया जाता है तो बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। दूसरे अगर ग्रेडिंग छन्नी लगाते हैं तो उससे अलग नहीं होते हैं।
1: यानी
0: तो
1: कि धान के बीज के लिए ये नमक के घोल में हमें उसका उपचार करना,
0: उपचार कर सकते हैं।
1: तो ये तो हो गई शोधन की बात या शुद्धिकरण,
0: शुद्धिकरण की बात।
1: शुद्धिकरण और शोधन में कुछ फर्क है?
0: शुद्धिकरण में सब चीजें आ जाती हैं, शोधन में भी है मुख्य रूप से, वैसे उपचार आता है लेकिन उपचार के पहले उसकी साफ सफाई भी उसी का पार्ट है।
1: और अब जांच अगर इसमें जो शब्द है हमारे विषय में,
0: तो अभी तो उपचार की बात बची है
1: जी,
0: तो उपचार लेकिन अभी से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली जब बोनी के समय आता है उसी समय उपचार करना रहता है। तो जिसे धान की बात की है हम, तो धान का तो इस तरह से कभी भी कर सकते हैं, नमक के पानी से अगर धान का उपचार करते हैं तो उसको नमक के पानी में धान को डाल करके उसके जो हल्के दाने हैं, हल्की चीजें हैं या रोग ग्रसित दाने हैं वो सब तैरते हैं तो उनको छान के अलग किया सकता है। उसके बाद उनको कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी में धोएं ताकि जो नमक का पानी का अवशेष है उसमें वो अलग हो जाए, क्योंकि नमक उसमें चिपका नहीं रहना चाहिए, अगर वो होगा तो नुकसान भी करेगा। तो अच्छे से 2 या 3 बार उसको फिर धोना चाहिए, धो करके वो सुखा के रख लें उसको दाने को। और फिर उसके बाद जब बोनी के समय आता है तो बोनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है बीज का उपचार, उसमें रासायनिक भी है जैविक भी है। रासायनिक में ये है कि जो मुख्य बीज जनित जो रोग होते हैं या मृदा जनित रोग होते हैं तो इन दोनों तरह के रोगों को कंट्रोल करने के लिए बीज का उपचार किया जाता है। उसके लिए अगर रासायनिक बात करें तो रसायन में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे बहुत कई किसान भाई जानते भी होंगे थायरम नाम की दवाई आती है, थायरम और बाविस्टीन ये दवाई आती है। आजकल कुछ नए मॉलिक्यूल भी है ना, बीटावैक्स पावर है जिसमें कार्बोक्सिन और थीरम का वो कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसी रासायनिक दवाइयों से अगर हम उनको बीज उपचार करते हैं तो 2.5 ग्राम दवाई 1 किलो बीज में लगता है। तो इस तरह से जो है ना उसको हम रासायनिक दवाई से उपचार कर लेते हैं। तो उसके उपचार करने के बाद बोनी करते हैं तो उसमें फिर बीज से जाने वाली बीमारी हो या जमीन से आने वाली बीमारी हो दोनों ही कंट्रोल होती है। तो ये जो बीज का उपचार करते हैं इसका असर रहता है लगभग 25 से 30 दिन रहता है। तो शुरुआती अवस्था में पौधे जब उगते हैं, अंकुरित होते हैं, उस समय बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं और उसी समय कई बार बीमारियों का प्रकोप होता है खेतों में। तो अगर हम उपचारित किए रहते हैं तो वो बच जाते हैं, उनमें रोग का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया। दूसरा एक कुछ जैविक उपचार भी है। जैविक उपचार में एक तो रोगों से बचाने वाला जैविक उपचार भी होता है, एक उसमें एक ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी का ही कल्चर होता है जो बीज को उपचारित करने से, या उसको मृदा उपचार भी कर सकते हैं उसे, तो लेकिन सरल होता है बीज का उपचार करना। अगर बीज का उपचार उससे करते हैं 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज में लगता है और बाजार में मिलता है, वो सब जगह सस्ता रहता है और रासायनिक नहीं है, जैविक है तो पर्यावरण के लिए भी नुकसान नहीं करता है, उससे उपचारित कर देते हैं तो जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं और खासकर जो मृदा से आने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है। क्योंकि ऐसी फफूंदी का कल्चर है जो दूसरी फफूंदियों को जो खेत में बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको ये नष्ट कर देता है, खा लेता है उनको, तो इससे भी उपचार कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जैविक उपचार है। इसके अलावा कुछ कल्चर रहते हैं जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, उनको बायो फर्टिलाइजर ही कहते हैं, जैसे राइजोबियम है ना, पीएसबी, और दूसरे तत्वों के भी आजकल मार्केट में कल्चर आने लगे हैं, पोटास के लिए भी आता है, सल्फर के लिए भी आता है, तो इनसे भी हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। पहले ये कल्चर जो है ना पाउडर फॉर्म में आते थे, इनके

0: पैकेट 200 ग्राम के पैकेट मिलते थे बाजार में। अभी जो है ना ये पाउडर भी कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर आजकल लिक्विड फॉर्म में आने लगे हैं। तो इनसे भी बीज को उपचारित करना चाहिए, और खासकर यदि जैसे दलहन फसल है, दलहन में फसल जैसे सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, उड़द वगैरह करते हैं किसान भाई खरीफ में, तो उनके लिए भी रख लें, राइजोबियम भी रखें और पीएसबी कल्चर दोनों रखें। तो राइजोबियम का काम होता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में वो गठानों का निर्माण अच्छा करता है, और वहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को वो प्लांट के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको उपलब्ध करवा देते हैं। वहीं पीएसबी कल्चर जो है, जड़ों के आसपास जो मिट्टी में फिक्स फास्फोरस होती है उसको सॉल्युबलाइज करता है, उसको जो है ना अवेलेबल फॉर्म में लाता है, और पौधों को जमीन से फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देता है। इससे पौधों का जो जड़ों का विकास है और उसका ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा बनता है। तो ये इनसे भी उपचार करना चाहिए, तो ये शोधन के ही पार्ट है। इसके अलावा आप कह रहे थे बीज की जाँच।
1: जी
0: बीज की जाँच बहुत जरूरी होती है, खासकर किसान भाई अपने घर का अनाज अगर बीज के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसका निश्चित रूप से जाँच किए बगैर बोनी न करें, क्योंकि जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है बीज को, तो उसमें कितना अंकुरण बचा हुआ है, कितना, क्योंकि हार्वेस्ट होता है जब कोई भी दाना, उस समय अंकुरण उसका जो है 100% होता है। अगर अच्छे से उसको सही सावधानी से थ्रेसिंग करके रखा जाए तो 100% उसका अंकुरण की क्षमता होती है, लेकिन वहां से घर में आने के बाद या भंडार में रखने के बाद उसका धीरे धीरे जैसे समय पास होता है वैसे उसे उसका अंकुरण कम होने लगता है, और ये डिपेंड करता है कई परिस्थितियों पर, जैसे रखे जाने की जगह पे टेम्परेचर कैसा है और रखे जाने के समय उसके अंदर मॉइस्चर कितना था, नमी कितनी थी बीज के अंदर, ये फैक्टर उसको जो है ना प्रभावित करते हैं। चूंकि हमसे कम से कम 5 से 6 महीने तक रखना पड़ता है कोई भी दाने को, उसके बाद उसका बोनी टाइम आता है, सीजन आता है, तो हमको जो है ना उसकी जांच एक बार कर लेना चाहिए कि आज अभी के समय में बोने के टाइम पे उसमें अंकुरण की क्षमता कितनी बची है, तो उसी के अनुसार से वो बीज बोने लायक है या नहीं है ये भी निर्धारित होता है। और दूसरा, अगर जैसे अंकुरण कुछ कम होता है तो बीज दर थोड़ी बढ़ा करके उसकी पूर्ति कर ली जाती है। तो ये दोनों ही उद्देश्यों के लिए बीज का अंकुरण जानना बहुत जरूरी होता है। अंकुरण जानने का बहुत सरल तरीका मैं बताऊंगा, किसान भाई उसको बहुत आसानी से अपना सकते हैं, उसके लिए उनको किसी विशेष यंत्र की जरूरत नहीं है और न ही बहुत साधनों की जरूरत है, क्योंकि किसान भाइयों के घर में सबके यहाँ थाली होती है। एक थाली लें जिसमें 1 से 2 किलो तक मिट्टी आ जाए, तो वो कहीं भी खेत का अपने मिट्टी अच्छी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा उसमें चाहे तो अगर गोबर की खाद हो वो भी मिला लें, बढ़िया उसको बारीक कर लें मिट्टी को, और थाली में भर लें। भर करके उसमें 100 दाने लें, जो बीज उनको अपना उपयोग करना है उस बीज के 100 दाने लें, और रेंडमली 100 दाने लें, उसमें चुन चुन के नहीं कि अच्छे अच्छे वाले बीज चुन चुन के देख देख के, ये जो बहुत अच्छा है, अच्छा साइज है, अच्छा चमक है, वो वाला बीज चुनना नहीं है, रेंडमली उठा के मुट्ठी में लिए और 100 दाने गिन के ले लें, 100 दाने उस मिट्टी में 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा दबा दें उंगलियों से रख के, अलग अलग पूरे 100 दाने दबा दें, और उसके बाद उसमें पानी डाल दें, सिंचाई कर दें, और उसकी जो है ना रोज एक बार कम से कम सिंचाई करते रहें। लगभग 7 दिन में, 5 से 7 दिन में ज्यादातर बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो 7 दिन बाद उसका काउंटिंग कर लें, गिनती कर लें कि कितने बीज अंकुरित हुए हैं, कितने उसमें अंकुर दिख रहे हैं,
1: उससे परसेंटेज निकला,
0: वो सीधा सीधा परसेंट हो जाता है।
1: एक प्रश्न और आता है
0: जी,
1: कि जो किसान अपने घर पे बीज बोने के लिए रखते हैं आगे के लिए, मतलब अगले वर्ष के लिए, और जो बीज बाजार में मिलता है,
0: हाँ,
1: दोनों में कुछ फर्क आएगा प्रोडक्शन में?
0: हाँ बिल्कुल फर्क आएगा, क्योंकि जो बाजार का बीज है अगर वो सही तरीके से उसमें किसी तरह का अगर फ्रॉड नहीं हो रहा है, अगर सही बीज है तो वो अच्छा गुणवत्ता वाला बीज होता है, उसमें उत्पादन लेने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेप पे मेंटेन किया गया है, सावधानी के साथ उत्पादन किया गया है, फिर उसका ग्रेडिंग भी होता है, फिर उसका अंकुरण की जांच भी होती है, और मिनिमम स्टैंडर्ड को वो प्राप्त करता है तभी बीज के रूप में उपयोग किया जाता है और उसको अनुमति मिलती है बाजार में आने के लिए,
1: सर्टिफाइड,
0: बिल्कुल सर्टिफाइड जैसे बीज होता है।
1: तो ये
0: लेकिन ये अंतर है, और किसान का जो घर में रखा वो तो अनाज रखता है ना, वो बीज तो रखता नहीं, ना तो खेत में प्रोडक्शन के टाइम में वो सावधानियों को बरतता है जो बीज के लिए चाहिए, ना वो किया जाता है, और कई बार किसान भाई उसका शोधन नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोनी करते हैं ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बीज जो उनको अपने बीज उपयोग करना है तो वो पहले से ही शोधन करें, उसका शुद्धिकरण करें और एक बीज के रूप में उपयोग करने लायक उसको बनाए। जो किसान के घर में रखा हुआ अनाज है, जो बीज के रूप में मार्केट में वो बीज है, तो यही अंतर होता है। अब उनको अपने अनाज को बीज के रूप में उपयोग करने के लिए बनाना पड़ेगा, उसी के लिए शोधन जरूरी है।
1: तो ये जो सारी बातें किसान भाइयों निकल कर आई हैं, जो डॉक्टर पुष्पेंद्र जी ने कही, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप किसान कृषि विज्ञान केंद्र के, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर ऐसा विषय था कि खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच, तो खरीफ तो दूर है लेकिन समय निकलते देर भी नहीं लगती है, ये भी तय बात है। और आपको अपने घर के बीज में क्या तैयारी करनी है, किस तरह से जाँच करनी है, किस तरह से शुद्धिकरण करना है, और किस तरह से आप उसे बीज रोपने की स्थिति में ला सकते हैं, और वनस्पत बाजार का बीज है

0: दोनों पर उन्होंने बात की। आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार किसान भाई।
2: भैया अभी अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय है तो खरीफ पूर्व बीजों का शोधन एवं जांच, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे थे अपन भैया समर्थ अग्रवाल। तो भैया पुष्पेंद्र जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, यदि हम अपनी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो जरूर लाभ लेंगे। और अब हम चाह रहे हैं कि आपके लाने कछु और मनोरंजन कर दो जाए, तो चलो भैया देशराज पटेरिया और साथियों को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत सुनते हैं।

0: खाए कैसे हुई ये, अरे कैसे हुई ये।
1: भैया अभी अपन सुन रहे थे देशराज पटेरिया और उनके साथियों को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत। और अब बात कर रहे थे आज के मौसम की। आज शिवपुरी जिला को अधिकतम तापमान रहो 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 29 डिग्री सेल्सियस। मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 17% और हवा की बात करें तो वह रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब चलत चलत कल के कार्यक्रम चौपाल में के विषय के बारे में आपको बता दें, कल चौपाल में चर्चा रहेगी गर्मी में पानी की बचत क्यों और कैसे और परिवार कल्याण की आधुनिक अवधारणा पर। और इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल को समय अभी यहीं पर समाप्त होते हैं। अभी वही शिल्पा को आज्ञा दो, राम राम, जय जवान।

0: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का फोकस है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत इटली के द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार। इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा उनके 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। आप इटली में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, तो आपने न केवल भारत इटली के संबंधों की प्रगति देखी है बल्कि इसे आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस यात्रा में अपने मीडिया ब्रीफिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
0: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
1: देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में एक नीचाई देखी गई थी, जो क्योंकि मरीन्स का इशू हमारे सामने आया था और उसके साथ साथ

0: भारत और इटली के संबंध काफ़ी नीचे चले गए थे। भारत इटली में इटली की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में वो यूरोपियन देशों की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थी एक एक समय पर। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पर था, लेकिन जो मरीन्स इशू था उसके चलते इन संबंधों में एक गिरावट आई। 2014-15 के बाद हमने देखा जब भारत और इटली ने इस इशू को ब्लैक बर्नर पर रखा
1: जी
0: और दोनों ने डिसाइड ये किया कि इसकी मध्यस्थता की जाए। तो जो स्पेशल कोर्ट है उसके तहत इस केस को ले गए
1: जी
0: दोनों देश आपसी सहमति के साथ में। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है।
1: जी
0: तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए हैं ये उनकी पहली बाइलैटरल विजिट
1: बिल्कुल
0: है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इटली जा चुके हैं लेकिन किसी और संदर्भ में गए
1: जी
0: थे। और इस बार इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ साथ रक्षा और क्लीन
1: जी
0: एनर्जी
1: बिल्कुल
0: टेक्नोलॉजी,
1: बिल्कुल
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है। तो
1: जी
0: बहुत सारे मुद्दे इस विजिट में उठे हैं।
1: अम्बेसडर वाधवा, आपने भी कहा कि इस दौरे के दौरान बहुत चीज़ों पे दोनों देशों के बीच में बात हुई, और आपने जैसा कहा कि आर्थिक उसमें जो एक सहयोग है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो नई दिल्ली और रोम के बीच 2025 में 16.77 बिलियन डॉलर्स तक का व्यापार हुआ था, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में 2029 तक ट्रेड जो है, व्यापार है, उसको 23.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 20 बिलियन यूरो से ज्यादा पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
1: अम्बेसडर वाधवा, अभी आपने सुना जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत और जो इटली है, दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक बहुत ही बहुत बेहद गुणकारी लोग हैं, बहुत स्पेशल हमारा टैलेंट पूल है, हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, और वहीं जो इटली है उसके पास अपनी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। तो दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी विशेषताएं हैं उनको कैसे अपने दोनों के व्यापार को और दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: देखिए, भारत और इटली की जो इकोनॉमीज हैं काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों के बीच में। और जब जॉइंट एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान निर्धारित किया गया था 2025-2029 का, तो उसमें ये तय हुआ था कि ये जो रोड मैप है बायलैटरल कोऑपरेशन का उसमें व्यापार और इन्वेस्टमेंट एक अहम उसका स्तंभ रहेंगे। और उसके चलते दोनों देशों ने काफ़ी कोशिश करी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इटली की तरफ से जो इनोवेशन है और फैशन है और लग्जरी है जिनके लिए इटालियन कंपनीज जानी जाती हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एसएमई सेक्टर है जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में इटली यूरोप में पहले नंबर पर एक समय पर पहुंच गया था। तो मशीनरी के तौर पर देखें तो इटली दुनिया भर को अपनी मशीनरी सप्लाई करता है। तो इसके चलते जो जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें हमने देखा है कि भारत के साथ इटली की काफी कॉम्प्लीमेंटारिटीज हैं। इसी के चलते जो 800 और जो जो कंपनियां इटली की भारत में आजकल सक्रिय हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खाद्य पदार्थ हुए, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। भारत में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा काफ़ी सालों से हो रही है। किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके, तो उसमें इटालियन कंपनीज काफ़ी सक्रिय हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट के जो क्षेत्र हैं उसमें इटालियन कंपनीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत ने देखा है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डिमांड है इटली में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 5-6 ऐसे सेक्टर्स भारत के हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, लेदर आप देख लें और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सभी सेक्टर्स इटली में इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो ये जाहिर है कि जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 20 बिलियन यूरो का एनुअल ट्रेड बाय 2029, मुझे लगता है उससे पहले ही ये पार हो जाएगा।
1: जी, अभी आपने भी कहा और अब प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो इटली की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो एक विशेषता है उसकी की डिजाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो गुणवत्ता में उसकी उसके लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस पर भी एक टिप्पणी की थी, चलिए सुनते हैं।
2: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है, इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
1: अम्बेसडर बाधवा, अभी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दोनों देशों की उन्होंने जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स, उनकी बात की, फिर उन्होंने कहा डिजाइन एंड मेक इन इटली एंड इंडिया एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले इतने पिछले 11 साल से जो भारत में सरकार है, पूरा फोकस जो रहा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की रहा है, और अब इसमें हम दूसरे देशों के साथ भी जो साझेदारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: तो हमने जैसा देखा है कि जैसे कि आपने कहा, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और उसके चलते काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम है जिसका मकसद यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसको 15% से लेकर जीडीपी की 15% से लेकर 24% 25% तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो तभी संभव होगा जबकि भारत में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वस्तुएं हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए एक इनपुट चाहिए, जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो इटली का जो डिज़ाइन और जो प्रिसिशन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जिसका उसके चलते भारत में ये जो स्केल है उसको आगे कर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो इटली के जो फिनटेक और फैशन की जो एरियाज हैं, भारत में जो मोबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी, इटली और इंडिया के बीच में मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुई है और इसके चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो और जो टैलेंट है भारत का वो इटली में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में आज उसका जिक्र किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान एक और फोकस एरिया था जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कल रोम पहुंचने के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया था। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने किसी न किसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट देखी है, तो आईमैक में को बढ़ावा देना और इसमें सहयोग कितना जरूरी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इटली के लिए भी, जो कि कुछ साल पहले तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था लेकिन उसके बाद बाहर हो गया था।
0: हाँ बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि भारत और इटली IMF के प्राथमिक पोल्स हैं। भारत एक तरफ है और इटली दूसरे एंड पर है।

0: बीच में दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ग्रीस है, इस तरह के कंट्रीज, और इसराइल को मिला लें उसमें, ये सभी कंट्रीज आईएमएफ के प्रमुख पात्र हैं। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब यह है कि जो सप्लाई चेन्स इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं
1: जी
0: इस कनेक्टिविटी के थ्रू, उसके साथ साथ जो गैस की पाइपलाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, वो सभी इसी कॉरिडोर के थ्रू डेवलप हो सकती हैं, और रेल रोड्स का जो एम्फेसिस है आईएमएफ का, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो पोर्ट्स हैं
1: जी
0: दोनों एंड्स पर भारत में और इटली में, उनके चलते जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी।
1: जी
0: तो ये सभी 5 या 6 सेक्टर्स हैं जो आईएमएफ के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, और इटली और भारत दोनों आईएमएफ के डेवलपमेंट में इक्वल साझेदार हैं। उनको उनकी बहुत चाहत है कि आईएमएफ सक्सीड करे, ताकि ये इन सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़े। और आपने जैसे कहा कि
1: जी
0: इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया था, उसने यही देखा है कि BRI जो जो है वो ओपेक है, और उससे कई सारे प्रॉब्लम्स उपस्थित हुए हैं दूसरे देशों में, और इटली नहीं चाहेगा कि उसकी उसको रेप्लिकेट किया जाए
1: जी
0: इस कॉरिडोर में।
1: अम्बेसडर अनिल वाधवा, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने आपने वक्तव्य और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, सुर्खियों के आज के अंक को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपके रेडियो सेट पर आ रहा है नया दौर फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में साहिर के बोल हैं और संगीत ओपी नैयर का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत। हसरत जयपुरी का गीत है, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो और खूबसूरत आवाज़ लता मंगेशकर की।

आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ में आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का गीत। शब्द हैं SH बिहारी के और तर्ज बनाई है OP नैयर ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिद्धि से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द हसरत जयपुरी के और धुन बनाई है SD परमन ने।

फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म की खूबसूरत गजल तलत अजीज की आवाज़ में। शायर हैं शहरयार और तर्ज बनाई है खयाम ने।

हमारे श्रोताओं के लिए सूचना, भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय संगठन, राजनीतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर और सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथयात्रा, कार्यालय, निवास और शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस और यातायात की समुचित व्यवस्था होना जरूरी हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति की क्षति न पहुँचाना, यानी कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना जरूरी है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस।

0: लिए पुलिस आयुक्त और सूचना सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना जरूरी होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजन कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षतियों की जिम्मेदारी भी आयोजकों को होंगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जा सकेगा जिसमें शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव और समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न होगी। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैली आम सभा पुतला दहन पदयात्रा रथ यात्रा वाहन रैली ज्ञापन कार्यालय निवास और शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग या रखरखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों रक्षा कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि दुर्लभ खनिजों आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी बंदरगाहों के आधुनिकीकरण लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करें।

0: देंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम

0: समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई

0: से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।

0: made the announcement at State Secretariat Nabana during a land handover ceremony to the Border Security Force BSF for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Repolling in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal will be held tomorrow. Six candidates, including two independents, are in the fray. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan yesterday withdrew his nomination from the contest. However, his name will remain on the ballot as the deadline for withdrawal of nominations has already passed. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th of April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. During the meeting, serious concerns were also raised over the growing spread of misinformation related to competitive examinations through anonymous online groups. Mr. Pradhan directed a focused crackdown on such networks, including proactive identification, blocking and taking down of channels spreading fake information. Meanwhile, a Delhi court has sent the five accused in the NEET paper leak case to judicial custody till the 2nd of next month. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations, UN in its report, projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the media update on the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Director of UN's Economic Analysis and Policy Division, Shantanu Mukherjee, also noted that India's diversified energy sources, strong refining capacity, large foreign exchange reserves and fiscal flexibility could help cushion the impact of rising oil prices caused by tensions in the West Asia and disruptions in the Strait of Hormuz. Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. We have a report.
1: Sensex rose by 118 points to close at 75,318, while Nifty added 41 points to settle at 23,659. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap 100 jumped 0.5%, while the small-cap 100 ended on a flat note with a positive bias. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 30 paise to close at a record low of 96 rupees and 83 paise against the US dollar. Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: Meanwhile, the growth of the combined index of 8 core industries in the country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45 degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
2: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है. परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया. वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है. मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है. अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा. भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है. अब खबरें तफसील से. भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी. इन माहिदों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए. ये माहिदे दो तरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं. दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए. भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं. बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर खौज किया है.
4: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
3: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा. जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरक पैदावार और मुश्तरक तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मीशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
4: दोनों देशों के स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
3: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुतहद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
4: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
3: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरक इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खत्ते में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
5: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
3: وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے صدر سرگیو ماتاریلا سے بھی ملاقات کی और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
4: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
3: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار زراعت، غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مدد کے ساتھ 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں تقریب کے دوران بھارت میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبد الناصر الشالی نے کہا کہ دونوں ممالک نے سال 2032 تک باہمی تجارت کا 200 ارب امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سوبیندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نبنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا، یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ سی اے اے کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جناب پردھان نے یہ بات آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انڈر گریجویٹ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کے 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک، وکاس بیوال، دنیش بیوال، یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں۔ عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم کھیرنار کی سی بی آئی تحویل میں توسیع کر دی ہے۔ سی بی آئی نے اپنے ریمانڈ پیپر میں کہا ہے کہ کھیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں کھیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچے بیچے تھے۔ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام سی بی آئی کو سونپا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس عذرداری کو خارج کر دیا جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے دفاعی حصول یابی کے پروگرام کے انتظامیہ کے وزیر لی یونگ چول سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران فریقین نے مشترکہ فروغ، مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے باراور کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لاہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کی عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے، جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ तवक्को है कि इसी तरह की सूरतेहाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा दो दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा तीन से चार दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िराअत समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड स्कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाड और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
2: जी। धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
2: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: सर, हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध

0: दिया, वो यही था जो हम अपने संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत के ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
0: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद इसमें और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव, वी विल शेयर नॉलेज and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: Madan ji, ab baat thodi vaccine diplomacy ki bhi kar lete hain. COVID-19

0: और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई। वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
1: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होना रहा, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
0: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
3: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
0: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटॉनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
3: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
0: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
3: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं, जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक

0: सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक क्या ऐसा होगा। लेखक हैं श्रीमती मधुराजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढांडियाल।

0: क्या सो गई पुष्पा?
1: नहीं, नींद नहीं आ रही।
0: क्या इस बरसात और तूफानी अंधड़ के कारण?
1: नहीं, ये बरसात तो तन मन को शीतल करती है।
0: फिर?
1: मुझे मेरी पिछली जिंदगी में आया तूफान बेचैन किए रहता है।
0: पुष्पा, मैं सब जानता हूँ, तुम क्यों बेकार में परेशान होती रहती हो?
1: मुझे न जाने क्यों हमेशा डर सा लगा रहता है।
0: डर? डर किस बात का?
1: यही, मेरी जिंदगी के काले सफ़े जो आज तुम्हारी वजह से सुनहरे हो गए हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे?
0: पुष्पा, जब तक पीयूष की सांसों में तुम्हारे प्रेम की ज्योत चल रही है, तुम्हारी जिंदगी के सफ़ों पर हीरे चढ़ते ही चले जाएंगे।
1: मत करो इतनी प्रेम भरी बातें, कहीं मेरी सांस ना रुक जाए।
0: पुष्पा, तुम्हारी सांसों से ही मेरा दिल धड़क रहा है, इसीलिए तुम्हारी सांसों को रुकने नहीं दूंगा।
1: क्यों, क्या कोई डॉक्टरी फार्मूला इस्तेमाल करोगे?
0: डॉक्टरी फार्मूला तो तुम्हारा पीयूष मरीजों पर इस्तेमाल करता है, परंतु तुमको देखता हूँ तो खुद मरीज बन जाता हूँ।
1: पीयूष।
0: हाँ।
1: वादा करो।
0: क्या?
1: तुम कभी मुझे दुख नहीं दोगे।
0: पुष्पा।
1: कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे।
0: पुष्पा।
1: कभी जलती लकड़ी से मेरी पीठ पर निशान नहीं बनाओगे।
0: पुष्पा,
1: देखो देखो मेरी पीठ।
0: ओह, बस करो पुष्पा, बस करो। क्या वो इतना हैवान था?
1: हैवान? हैवान भी नाम कम है उसके लिए। वो और उसका पूरा परिवार नर पिशाचों से कम ना था।

0: अरे पुष्पा की माँ, पुष्पा की माँ, अरे भाई कहाँ हो तुम?
1: क्या बात है, घर में मेहमान आ चुके हैं और तुम पुष्पा की माँ की रट अभी भी लगाए हो।
0: अरे भाई अब तो हमारी आखिरी जिम्मेदारी भी खत्म हो रही है और ये सब तुम्हारे सहारे ही हुआ है।
1: मैं तो तुम्हारी परछाई जैसी रही, करने वाले तो तुम थे, मैं तो बस साथ देती रही।
0: बिन माँ बाप की मेरी दो छोटी बहनों का तुमने ही तो कन्यादान किया था।
1: आप भी कैसी बातें करते हैं, क्या बड़ा भाई बाप जैसा नहीं होता? फिर बड़ी भाभी माँ हुई कि नहीं?
0: हाँ सच में हम लोग राधा और पार्वती के माँ बाप बन गए थे, तभी तो उनका कन्यादान हमने अपनी बेटियों की ही तरह किया।
1: हाँ और आज असल में हमें अपनी बेटी को विदा करना है।
0: बीस साल तक हमारे घर में रहने वाली पुष्पा अब पराई हो जाएगी।
1: लड़कियां तो होती ही पराया धन है।
0: हाँ सावित्री।

0: अब आप एक पौधा लगाते हैं, परवरिश करते हैं और एक दिन वही पौधा उन्हें रुलाकर दूसरे घर में खुशबू बिखेरने चला जाता है।
1: यही तो नियति है और सामाजिक दायित्व तो भी।
0: लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने पुष्पा में वो सभी गुण विकसित किए हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए।
1: भगवान करे उसकी ससुराल के सभी लोग उसके गुणों की सराहना करने वाले हों।
2: भैया भैया।
0: क्यों राधा, क्या बात है?
2: भैया, पुष्पा आप लोगों के बारे में बहुत चिंता कर रही है।
0: पागल हो तू, समझाना उसे। भाई, जितना दाना पानी उसका इस घर में लिखा था उसका पूरा होने का समय आ गया।
2: भैया, आप अकेले रह जाएंगे, यही सोच सोच कर वो बार बार परेशान हो जाती है।
0: सुनती हो पुष्पा की माँ, है ना पगली वो है? अरे कहाँ रह जाएंगे अकेले हम, अब तो परिवार और बढ़ जाएगा। दामाद बाबू जैसा बेटा भी तो अपने परिवार में शामिल हो जाएगा।
1: और दामाद जी, उनके माँ बाप, उनकी बेटी, ये सब भी तो परिवार के सदस्य जैसे हो जाएंगे। बीबी जी, जैसे आप गई तो किशन जीजा जी हमारे घर के सदस्य हो गए कि नहीं?
2: हाँ भाभी।
1: बीबी जी, हमारे पास और कुछ तो है नहीं, सिर्फ प्यार है और इसी प्यार से हम सबको बांधने की कोशिश करते हैं।
2: भले ही ये धागे कच्चे हों लेकिन इनकी जकड़न फौलादी है।
3: भाई साहब, सारा इंतजाम देख लिया, कहीं कोई कमी नहीं है।
0: अरे जब शिवानंद और किशन जी जैसे कंवर साहब व्यवस्था देख रहे हो तो भाई कोई काम अधूरा रह ही नहीं सकता।

0: बेटी आप ससुराल को ही अपना घर समझना।
1: मम्मी पापा अब आपकी देखभाल कौन करेगा?
2: रहेंगे बेटी, तू सुखी रहना,
0: सदा ससुराल का मान रखना बेटी।
1: अब तो सास ससुर ही तेरे माँ बाप है।
3: हमारे घर में तो तू मेहमान थी बेटी।
1: बुआ जी, फूफा जी, आप सभी से शहर में है, मैं अपने मम्मी पापा को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ।
4: चिंता मत कर बेटी, तुम निश्चिंत होकर जा।
5: क्यों पुष्पा, कितना रो रही थी विदाई पर? हाँ माँ बाप से बिछड़े कितने दिन हुए अभी?
6: जी 15 दिन हुए हैं।
5: ज्यादा बातें रमेश को अच्छी नहीं लगती। अरे कैसी बेटी हो, अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहती? हाँ
6: जी मैं तो मिलना चाहती हूँ, कब ले चलेंगे?
5: ज्यादा बातें रमेश को अच्छी नहीं लगती। हम लोग जब घूमने चलेंगे लौटते हुए तुझे तेरे माँ बाप से भी मिलवा देंगे।
6: जी ये तो बहुत अच्छा प्लान है।
5: केवल जी कहो, क्योंकि ज्यादा बातें रमेश को अच्छी नहीं लगती। और सुन
6: जी,
5: फ्रिज से बर्फ और सोडा दे जाना। पिताजी, पुष्पा तो मेरे घर आते ही मेरे पापा मेरी मम्मी कहकर रोती रहती है। अरे ना मेरे माँ बाप का ख्याल करती है ना मेरी इकलौती बहन का।
7: ये क्या कह रहे हैं जमाई बाबू, लेकिन जब आप उसे यहाँ लाएंगे हम उसे और समझाएंगे, अब तो वो आपकी अमानत है।
5: जी अमानत को तो और भी संभाल कर रखना होता है ताकि उसे सही हालत में लौटा सके।
0: जमाई बाबू ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं?
5: ये बहकी बातें नहीं है, ये हकीकत है भाई। मम्मी जी ये आप लोगों को भूल नहीं पा रही है, इसलिए हम लोगों से जुड़ी नहीं अभी तक।
7: ये कैसे हो सकता है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वैसे संस्कार तो हमने उसे दिए नहीं।
5: मम्मी जी इसीलिए मैं उसे पहाड़ों पर ले जाना चाह रहा हूँ ताकि 15 दिन वो मेरे साथ रहे और मेरे बारे में जाने, भाई मुझे भी समझे।
0: ये तो जमाई बाबू बहुत अच्छी बात हुई। हाँ? कब जा रहे हैं?
5: वो क्या है कि मैं तो अभी चल दूं, लेकिन एक समस्या है।
7: वो क्या जमाई बाबू?
5: पिताजी आपने शादी में नगद 1 पैसा भी नहीं दिया, इसलिए ये अड़चन आ रही है।
7: देखिए जमाई बाबू, इस बारे में आपके पिताजी से शादी के पहले पूरी बात हो गई थी, हमने अपनी हैसियत भी उन्हें बता दी थी और ये भी बता दिया था कि हम कैसी शादी कर सकेंगे। इन सब बातों पर वो सहमत भी थे, फिर भी हमने अपनी हैसियत से ज्यादा ही खर्च किया।
5: लेकिन हमारी हैसियत आपने नहीं रखी।
0: जमाई बाबू पिछली बातें पीछे छूट गईं, अब आप समस्या बताइए।
5: मम्मी जी वो क्या है कि समस्या है तो बस 10,000 रुपए की।
7: 10,000?
0: 10,000?
5: हाँ पिताजी, इतने में हम घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। और देखिए क्या है कि 5,000 मेरे पास हैं, कुल 15,000 घूमने फिरने में तो काफी होंगे ना। और फिर अभी ही मौका है, पता नहीं गृहस्थी में रमने के बाद मौका मिले या ना मिले।
7: ठीक है जमाई बाबू, कल शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। खाने का समय हो रहा है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगवाता हूँ।
5: खाना? अच्छा अच्छा, वो क्या है कि मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिए।
7: ठीक है।

0: क्या सो गए?
1: नहीं सावित्री, नींद नहीं आ रही है। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
0: रह रहकर मुझे पुष्पा का ख्याल आ रहा है।
1: भगवान उसे खुश रखे।
0: 10,000 कहाँ से लाओगे?
1: दामाद ने पहली बार मुंह खोला है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। GPF से निकाल लूंगा।
0: अभी तो निकाले थे शादी में, बार बार क्या GPF से निकाल सकते हैं?
1: निकाल तो नहीं सकते, शायद ऑफिस में पूछूंगा।
0: जमाई बाबू की बातों से मुझे डर लग रहा है।
1: लड़का अच्छा नहीं है, जानती हो। खाना अपने कमरे में क्यों मंगाया?
0: क्यों?
1: वो शराब पी रहा था।
0: हे प्रभु, मेरी पुष्पा की रक्षा करो।
2: भाई साहब, क्या रमेश बाबू आए थे?
1: हाँ आए थे कंवर साहब।
2: क्या कह रहे थे?
1: ज्यादा तो नहीं कहा, परंतु आने वाले तूफान का संकेत जरूर दे गए।
2: तूफान? मैं कुछ समझा नहीं।
1: हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
2: क्या ससुराल अच्छी नहीं है?
1: ससुराल का तो पता नहीं, पर जमाई बाबू मुझे ठीक नहीं लगे।
2: भाई साहब आप चिंता ना करें, वकील हूं मैं, वकील सभी को जेल करवा दूंगा।
1: भगवान करे उसकी नौबत ना आए। कंवर साहब, अब आप जब कभी मुकदमे के सिलसिले में जबलपुर जाएं, तो पार्वती को भी लेते जाइएगा, और हाँ पुष्पा से जरूर मिलकर आइएगा।
2: ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें।

0: पुष्पा, ओ पुष्पा।
1: क्या बात है जी?
0: ज्यादा बातें रमेश को पसंद नहीं, सिर्फ अदब से जी बोला करो।
1: जी।
0: देखो, मेरा टाइपिंग का स्कूल यूं तो ठीक चल रहा है, पर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और एक फोटोकॉपी मशीन आ जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएं।
1: इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जी?
0: अरे तू अपने पिता से कह दे।
1: मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं होंगे जी।
0: पैसे नहीं होंगे? अरे पैसे नहीं थे तो लड़की क्यों पैदा की?
1: आप मेरे देवता स्वरूप पापा के लिए अपशब्द ना कहें जी।
0: क्या ये अपशब्द है? तेरी ये मजाल कि मेरे सामने मुंह खोले हैं?
2: क्या बात है रमेश बेटा?
0: पापा, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन खरीदनी है, उसके लिए ये अपने पापा से पैसे ले आए।
2: बहू, रमेश ठीक कह रहा है।
1: लेकिन पिताजी, मेरे माँ बाप का मध्यम वर्गीय परिवार है, उस पर उन्होंने दो दो बुआओं की शादी भी की है।
2: ये सब जिम्मेदारियाँ तो सभी निभाते हैं।
1: मैंने शादी के समय पापा के लोन के कागज, पे स्लिप, GPF सभी कागज देके, उनके पास कुछ नहीं है, और अगर कुछ है तो वो है सिर्फ कर्जे का बोझ। पता नहीं घूमने के लिए उन्होंने 10,000 रुपए कहाँ से लाकर दिए होंगे।
0: पुष्पा, तू पापा से जुबान लड़ा रही है?
1: मैं जुबान नहीं लड़ा रही जी, नम्रता से अपने पापा का पक्ष ले रही हूँ।
0: बदतमीज तेरी।
2: क्या कर रहा है रमेश?

0: बहू पर हाथ उठाता है। अरे चले यहां से।
1: मुझे नहीं लगता बेटा इसके बाप से अब कुछ मिल सकेगा, इसलिए मार पीट कर इसे खत्म कर दे ताकि हम तेरी दूसरी शादी कर सकें।
2: ठीक है।
3: हेलो, मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ, आप कौन?
0: समधी जी, मैं सूरज भान बोल रहा हूँ, रमेश का पिता।
3: प्रणाम समधी जी। कहिए पुष्पा और रमेश जी कैसे हैं?
0: एक बुरी खबर दे रहा हूँ आपको।
3: बुरी खबर? जल्दी कहिए क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
0: वो आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है।
3: क्या हुआ मेरी बेटी को, जल्दी बताइए।
0: उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, आप आकर खुद ही देख लीजिएगा।
3: मैं रात की गाड़ी पकड़कर सुबह तक पहुंच जाऊंगा। हेलो शिवानंद जी।
4: हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब।
3: जल्दी तैयार हो जाइए, जबलपुर जाना है।
4: क्यों, क्या बात है भाई साहब?
3: पुष्पा हॉस्पिटल में है, अभी अभी रमेश के पिताजी का फोन आया था।
5: क्या हुआ?
3: अरे तुम जल्दी तैयार हो जाओ, पुष्पा की माँ, पता नहीं पुष्पा कैसी है।
4: भाई साहब मैं पार्वती को लेकर आ रहा हूँ साथ में।
3: ठीक है। हेलो कौन, राधा?
6: हाँ भाई साहब, नमस्कार।
3: नमस्कार, किशन कहाँ है?
6: क्यों, क्या बात है?
3: अभी जबलपुर चलना है, पुष्पा अस्पताल में है।
6: अरे पुष्पा की शादी को तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं।
3: वो बात नहीं है राधा, कुछ और है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
6: भाई साहब आप चिंता न करें, मैं और किशन तुरंत आ रहे हैं।
4: भाई साहब आप नर्वस ना हो, हम सब हैं ना।
7: मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी।
5: भाभी भगवान सबकी सुनता है, वो इतना निर्दयी नहीं होगा।
4: इन सभी को जेल भिजवा कर रहूंगा भाई साहब।
3: बेटी हम आ गए, कोई चिंता मत करना।
7: पापा, हे भगवान, बेटी तेरी ये हालत कैसे हुई?
3: इतनी कमजोर कैसे हो गई तू?
7: पुष्पा बता, सब बता तू, तेरे साथ क्या हुआ बता।
8: बुआ,
4: एक एक को जेल भिजवा कर रहूंगा, तू पूरी बात बता पुष्पा।
3: बेटी ससुराल का कोई भी नहीं है तेरे पास?
8: नहीं पापा, मैं तो उन लोगों को बोझ लगने लगी थी ना।
7: लेकिन बात क्या हुई बेटी जिसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई?
8: माँ, वो बार बार इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन खरीदने के लिए आपसे पैसे लाने को कहते थे। मुझे आपकी स्थिति पता थी इसलिए इनकार कर देती थी। इस पर पहली बार मुझे ससुर के सामने मारा।
7: मेरी बच्ची।
8: फिर तो बात बात पर ताने गाली गलौच और मारना पीटना आम बात हो गई। परसों तो हद हो गई, रमेश ने फिर पैसे लाने को कहा, मेरे मना करने पर उसने पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत पिए हुए था, सास ससुर और ननद सब उसे उकसा रहे थे। उसने मुझे इतना मारा माँ कि मैं बेहोश हो गई।
7: मेरी बच्ची, मेरी बच्ची।
8: उन्होंने मुझ पर पानी डाला, तब मैं होश में आई तो ससुर बोले, पानी पड़ने से ठंड लग रही होगी बेचारी को, जरा आग से सेक दे रमेश। पापा, रमेश ने मुझे पीठ पर लकड़ी से जलाया।
4: भाई साहब, मैं और नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ।
3: कमांडर, तैश बच्ची ऐसी वैसी हरकत मत कर बैठना।
4: नहीं भाई साहब, मैं थाने में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, सभी को गिरफ्तार करवा कर ही रहूंगा।
6: ऐसे नर पिशाचों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

0: सुनो जी, पुष्पा पूरी तरह से टूट चुकी है।
1: 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो गुमसुम की गुमसुम है।
0: मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जाता।
1: अच्छा हुआ उन नरपिशाचों से छुटकारा मिल गया।
0: शिवानंद जीजा जी कह रहे थे समझौते के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे वो लोग।
1: हाँ, और राजीनामे में सब कुछ लिख कर देने को तैयार भी हो गए थे।
0: बार बार जहर थोड़े ही पी सकते हैं, परंतु अब किया क्या जाए, पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है पुष्पा की।
1: सावित्री, मैंने कुछ लोगों से कहा है कि मैं पुष्पा की दूसरी शादी कर दूंगा, बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाना चाहिए।
0: पर पुष्पा शायद ही माने।
1: सावित्री, तुम पार्वती राधा उसे समझाती रहो, एक दिन तुम सबके प्रयास जरूर सफल होंगे और फिर शहनाई बजेगी।
2: अतीत याद करके कपकपी आ जाती है बुआ। मम्मी पापा यदि बार बार नहीं कहते तो मैं कभी हाँ नहीं कहती।
3: पुष्पा, लड़की अपनी गृहस्थी में ही भली लगती है।
2: क्या इस बार ससुराल अच्छी है बुआ?
3: हाँ शायद, क्योंकि उन्होंने कोई मांग नहीं रखी है।
2: शायद अगर लालची होते तो क्या मुझ जैसी तलाकशुदा से शादी करते?
3: जवाई बाबू जरूर दयावान होंगे, औरत का दर्द समझने वाले।
4: भाई साहब,
1: हाँ,
4: आपको लड़के के पिताजी बुला रहे हैं।
1: इस समय जबकि बारात चढ़ने का समय हो रहा है। ठीक है, चलो चलकर देखता हूँ क्या बात है।
4: मैं भी चलता हूँ, किशन जी को भी साथ ले लेता हूँ।
2: बुआ, अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ना तो मैं जहर खा लूंगी। हाँ,
1: आपने मुझे बुलाया प्रसाद जी।
5: आइए सत्यप्रकाश जी।
1: जी,
5: आपका इंतजाम देखकर प्रसन्नता है।
1: धन्यवाद, मुझ गरीब से जो बन पड़ा है आपके सामने है।
5: आप सभी कुछ ठीक दे भी रहे हैं, परंतु एक कमी हमें लग रही है।
1: कहिए, यदि मेरी सामर्थ्य में होगा तो अवश्य पूरी करूंगा।
5: मेरा बेटा शिफ्ट ड्यूटी करता है
1: जी।
5: यदि स्कूटर आप दे देते तो रात बेरात उसे लौटने में आसानी हो जाती।
1: ये आप इस समय कैसी बातें उठा रहे हैं?
4: प्रसाद जी, आप नहीं जानते, भाई साहब पर अभी पिछली शादी का ही काफी कर्जा है। किसी तरह जमीन जायदाद बेचकर ये शादी कर रहे हैं।
5: वकील साहब, ये तो एहसान फरामोशी है। आपकी तलाकशुदा लड़की से शादी करने के लिए अपने रिश्तेदारों को कैसे मैंने तैयार किया है ये मैं ही जानता हूँ। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी, आपको अपना मानकर ही इस रिश्ते को स्वीकारा था।
1: प्रसाद जी, आपका एहसान सर माथे पर, बस ये स्कूटर की मांग छोड़ दीजिए।
5: सत्य प्रकाश जी, जब तक स्कूटर नहीं तब तक शादी नहीं।
1: प्रसाद जी, ये जुल्म मुझ बदनसीब पर ना कीजिए। आप शादी करवाइए और भरोसा कीजिए, मैं कुछ दिनों बाद स्कूटर के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा।
5: अरे कल किसने देखा है, जो होना है वो आज और अभी होना है, वरना मैं बारात वापस ले जा रहा हूँ।
1: मैं आपके पाँव पड़ता हूँ प्रसाद जी, ऐसा मत कीजिए।
4: भाई साहब,
1: ऐसा मत कीजिए।
4: ये आप क्या कर रहे हैं, इन दहेज के लालचों के पाँव पड़ रहे हैं आप। इन्हें तो ठोकर मारनी चाहिए। जाइए आप लोग, शौक से बारात वापस लौटा कर ले जाइए। आज स्कूटर मांगा है, कल पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। अच्छा हुआ तुम लोगों की औकात पहले ही पता चल गई। अरे तुम क्या लौटने को कह रहे हो, हम ही तुम्हें लौटा रहे हैं, वो भी धक्के मार कर। निकलो यहाँ से, निकलो, चलो यहाँ से।

0: ओह, मैं कहाँ हूँ?
1: आप अस्पताल में हैं। मुझे डॉक्टर पीयूष कहते हैं।
0: मुझे आपने क्यों बचा लिया डॉक्टर साहब?
1: मैंने बचा लिया? मैं बचाने वाला कौन होता हूँ? बचाने वाला तो भगवान है। मैंने तो जो पढ़ा उसका आपके ऊपर प्रैक्टिकल किया तो आप बच गई।
0: जहर तेज नहीं था शायद?
1: जहर बहुत तेज था देवी जी, परंतु ये मेरा सौभाग्य था या आपका कि आप टकराएं भी तो एम्बुलेंस से। पुष्पा जी, मैं आपकी पूरी कहानी जान चुका हूँ। यदि आप हाँ कहें तो मैं आपका हाथ थामने को तैयार हूँ।
0: क्या
1: जी, आपके सभी रिश्तेदारों से मैं बात कर चुका हूँ।
0: मेरे बारे में इतना जानकर भी?
1: हाँ, सब कुछ जानकर ही मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ।
0: आप भावुकता में बहकर फैसला कर रहे हैं।
1: नहीं पुष्पा जी, ये भावुकता नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आदर्श ही मेरा ओढ़ना बिछौना रहे हैं। आज आपकी कहानी सुनी तो मेरे मन ने कहा कि पीयूष, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है।
0: डॉक्टर साहब, ये आपकी नहीं, मेरी परीक्षा की घड़ी हो गई है। मैं ना हाँ कर पा रही हूँ, ना इनकार कर पा रही हूँ। कैसी दुविधा में भगवान तूने मुझे डाल दिया।
1: पुष्पा जी, मैंने सुना है कि सौभाग्य एक बार दरवाजा खटखटाता है और बदकिस्मती बार बार। आज जब किस्मत दरवाजे पर खड़ी है तो आप संकोच कर रही हैं।
0: डॉक्टर साहब, मैं दो बार से चली जा चुकी हूँ, इसलिए खुशी के हर मौके पर मुझे लगता है कि कहीं दुख खुशी का मुखौटा लगाकर तो नहीं आया।
1: पुष्पा जी, देखिए मेरी तरफ, मेरे चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं है। हाँ, आपका ट्रीटमेंट करते समय जरूर एक कपड़ा मेरे चेहरे पर था, वो डॉक्टरों के लिए जरूरी होता है, कृपया उसे मुखौटा ना समझे।
0: डॉक्टर साहब, इतनी सीरियस बातों में भी आप हंसने का पहलू निकाल लेते हैं।
1: हंसने से आधी तकलीफ दूर हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, किस्मत ने मेरे साथ छल किया है कि मैं हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल गई हूँ।
1: आपकी हाँ हो जाए तो देखना पुष्पा जी, मैं आपको कह कहे लगाना सिखा दूंगा।
0: डॉक्टर साहब।
1: अरे ये क्या डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? मेरा नाम पीयूष है, पीयूष कहकर बुलाइए। डॉक्टर साहब सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मरीज से बातें कर रहा हूँ।
0: पीयूष जी, हाँ? आपकी बातें सुन सुनकर मैं और हीन भावना से ग्रसित होती जा रही हूँ। कहाँ आदर्श के शिखर पर आप और कहाँ तलाकशुदा लेबल लगाए मैं।
1: जरा देखूं तो, अरे भाई मुझे तो कहीं कोई लेबल नहीं दिख रहा। मुझे तो आपके माथे पर अपनी तकदीर लिखी दिख रही है, वो भी कंप्यूटर पर टाइप की हुई।
0: अच्छा हुआ पीयूष जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर टाइप की हुई नहीं कही।
1: क्यों?
0: ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन ही मेरी दुर्गति का कारण बने हैं। पीयूष जी, आपने पूछा नहीं कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन मेरी दुर्गति का कारण बने थे?
1: नहीं पुष्पा, मुझे ऐसी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है जो तुम्हारी दुर्गति का कारण बनी। मुझे बताना है तो वो बातें बताओ जिन पर कभी तुम खिलखिलाई थी। मुझे
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक क्या ऐसा होगा। लेखिका थी श्रीमती मधुरा जैन और प्रस्तुतकर्ता राकेश टांडियाल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान,

0: कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 होने को है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए पंडित M.S. गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन, राग है भोपाली। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है और तबले पर संगत की है लालजी गोखले ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित एमएस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन, राग था भोपाली। तबले पर संगत की थी लालचील गोखले ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dongyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है, जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitele, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय।

10 मिनट हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय।